0: श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। तो जब भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे मथुरा में, तो राधा जी हर समय यही कहते कि मुझे और सुनना है बंसी, और सुनना है, और सुनना है। और जो ग्वाल बाल गायें सब जब कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, सब कान खड़े होकर सुनने लगते थे। उनको इतना मधुर लगता था बंसी, और वो बड़े उत्साह के साथ उनके साथ खेलते भी थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय का आनंद वही जानेंगे, हम तो बखान कर नहीं सकते। बढ़ते हैं आगे सेवा भाग की तरफ। कभी कभी कुछ लोग जो कुछ विकृत मानसिकता के होते हैं, विकृत मानसिकता समझते हैं आप?
1: नहीं, थोड़ा समझाओ।
2: विकृत मानसिकता, राजेंद्र जी शब्द थोड़ा से मुश्किल।
0: विकृत मानसिकता का मतलब होता है कि जिनके मन की स्थिति थोड़ा सा हिली डुली हुई है।
2: अच्छा।
0: हाँ, वो सेवा करने वाले परोपकारी लोगों को भी नौकर मानकर असभ्य व्यवहार करते हैं। यानी जो लोग सेवा कर रहे हैं,
1: अच्छा,
0: उन पे भी व्यवहार सही नहीं करते उनके साथ, उनकी मानसिकता क्योंकि ठीक नहीं रहती, विकृत रहती है, इसलिए उनको विकृत मानसिकता कहा जाता है। यह अनुचित है सभी लोगों को दूसरे के साथ व्यवहार करने से पहले यह अवश्य ही सोचना चाहिए कि मैं जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ यह नौकर है या सेवक है।
2: राजेंद्र जी ऐसा, ये बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। लोग ऐसे मैन मार्क देयर सोम्स मिस ब्रेक फन, तो अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ऐसा ही देखना कि जो ऐसे शब्द, तो मेरा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कैसे था वो शब्द जो आपने अभी कहे,
0: विकृत
2: मानसिकता। हाँ, जो खेस्तलक जो एकदम से ठीक नहीं है ना शांता जी।
1: हाँ, जो निवार है।
2: और खास करके जो वो सेवा आदि करे तो लोग उनसे कभी काल के और उनके गलत फायदा उठा लेते हैं ना राजेंद्र जी।
0: जी,
2: तो वो भी ना करना चाहिए। दोस्तों, ये संदेश, आज का संदेश जो हम सब अभी लगे हुए हैं कि नौकरी और सेवा, इन दोनों में अंतर क्या है, हम सब कुछ ना कुछ संदेश सुन रहे हैं राजेंद्र जी से, पर आगे में क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता है राजेंद्र जी, कुछ और।
0: हाँ, थोड़ा सा संदेश हो रहा है, इसके बाद एक बहुत सुंदर सा जो हम गाना बजाएंगे। भले ही सामने वाला व्यक्ति नौकर हो, तो भी उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उसके साथ असभ्यता करने का अधिकार मिल गया हो। वह भी मनुष्य है, उसका भी स्वाभिमान है, होना चाहिए, अन्यथा लोग आपको ही असभ्य व्यक्ति कहेंगे। हो सकता है कोई कठोर भाषी व्यक्ति आपको जंगली भी कह दे, तो ऐसी नौबत आने पर परिस्थितियों से बचें। चाहे नौकर हो चाहे सेवक हो, सबके साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार करें और आनंद से जिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं। तो क्यों ना हम आगे एक गीत की ओर बढ़े,
2: सुंदर सा गीत की ओर, क्योंकि
0: सुंदर सा गीत
2: शांता का पिटारा से निकाला हुआ दोस्तों, और देखा जाएगा कि कौन सा गीत आज शांता लेकर और आए हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, चला देते हैं।
0: जी जरूर।

0: आता चल। तो गीत गाते हुए साथी गुनगुनाते हुए चले गए, क्यों ना हम भी आगे की तरफ चले। नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय, इन सारे शब्द हमारे पास फिर भी लोग अंग्रेजी की गुलामी की भाषा बोलकर गर्व क्यों महसूस करते हैं।
1: हम तो डर गए रजेंद्र जी।
0: जो अंग्रेजी शब्द लोग बोलते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, जैसे सारी, सॉरी, थैंक यू इत्यादि। शास्त्रों में 5 प्रकार के अभिवादन बतलाए गए हैं, जिनमें से एक है नमस्कारम। नमस्कारम यानी संस्कृत का शब्द है। नमः का मतलब होता है मैं, मेरा अहंकार झुक गया। नम मतलब झुकना। नम का एक और अर्थ हो सकता है जो है ना, मैं यानी कि मेरा नहीं। आध्यात्म की दृष्टि से इसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने अहंकार को कम कर रहा है, नमन कर रहा है। नमस्कार करते समय मैं दोनों हाथ जोड़कर एक कर दिया जाता है, दोनों हाथों को जोड़कर एक कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि इस अभिवादन के बाद दोनों व्यक्ति के दिमाग मिल गए या एक दिशा में हो गए। हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? अब अगला क्वेश्चन है कि हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं?
2: राजेंद्र, अभी तो मैं डर गई थी क्योंकि आपने कहा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, मैं तो सोच रही आप तो यहाँ से जा रहे हो।
0: हाँ, जा नहीं रहे, लेकिन जाने का तो आधा घंटा भी है।
2: हाँ,
0: लेकिन हम यही बता रहे थे कि
2: इनका अंतर बता रहे थे।
0: जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सब चीज बनाई गई है
2: जी,
0: उनका मतलब क्या है ये हमें बड़ा पता होना चाहिए। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? भारत में बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ये दरअसल बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति के द्वारा किए हुए उपकार के प्रति स्वरूप अपने समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। अच्छे भाव से किया हुआ सम्मान के बदले बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, जो एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और इसमें आदर के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रस्थान, किसी के स्वागत में उठकर खड़े होना। जैसे कोई आया, आप उठ गए तो उस व्यक्ति को उसको लगेगा आप उसका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, हाथ जोड़कर सत्कार करना। उपसंग्रहण, बड़े बुजुर्ग शिक्षक के पांव छूना। साष्टांग, पांव, घुटने, पेट, सर और हाथ के बल जमीन पर पूरे लेटकर सम्मान करना। प्रत्याभिवादन, अभिनंदन का अभिनंदन से जवाब देना और जय महादेव कहना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज समझा कि बड़ों के पैर क्यों छोड़ते हैं, आदर किस प्रकार से होता है, शास्त्रों में बताए गए जिन नियम का नमस्कार का क्या मतलब होता है। आपने सुना, बहुत अच्छा लगा होगा। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: कहने के तो बहुत कुछ है, पर आपने जल्दी जल्दी से और संदेश हम सबको सुना दिया कि और नमस्कार तथा यानी कि राजेंद्र जी, इसमें जब देखा जाए तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के और संदेश सुना दिए।
0: हाँ।
3: और प्रथम संदेश था कि किसके स्वागत और कैसे किया जाए।
0: हाँ।
3: तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, उसके बारे में थोड़ा और निचोड़ दे तो और बढ़िया होता।
0: प्रस्थान, किसी के स्वागत में उठकर खड़े हो जाना, यानी
3: जो कोई हमारे घर से जैसे आए।
0: नहीं, जैसे आपके घर पे कोई आए और आप बैठे हैं।
3: हाँ।
0: कुर्सी पे या सोफा पे।
3: हाँ जी।
0: तो आप एकदम उठ गए।
3: हाँ।
0: और
3: तो उसका महत्व और बढ़ जाता।
0: हाँ, उसका महत्व बढ़ जाता है और वो व्यक्ति को लगेगा कि ये हमारा स्वागत कर रहा है।
3: पर आजकल ऐसा होता ही नहीं। आजकल तो लोग जो आए किसी के घर पे जाए तो जो हाथ उठा दिए, हाथ दे दिए तो बस उतने भर।
0: हाँ, तो यही तो हम सीख रहे हैं यहाँ से कि क्या होना चाहिए।
3: शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
2: सम्मान देता है।
3: सम्मान देता है।
2: हाँ।
3: तो कोई कभी किसी पे और जाए तो किसी को हम सम्मान यानी कि देने चाहे या तथा ये बात भी हो जाता कि हम औरों को सम्मान करेंगे तो हम अपने को भी सम्मान प्राप्त करेंगे।
0: हाँ।
3: और ऐसा नहीं कि हम बैठे ही रहे और किसी आए तो हम बस हाथ उठा दिए।
0: ऐसा ना। जब हाथ उठाने का मतलब ही है कि यही तो हमारी संस्कृति है, इसी संस्कृति को तो हम आगे बढ़ाने का बढ़ रही है। जब कोरोना का समय हुआ
3: जी बस मैं यही कहने वाला,
0: हाथ वाला जो मिलाने वाला काम एकदम खत्म हो गया,
3: खत्म हो गया
0: और हाथ जोड़ने वाला काम शुरू हो गया। तो हमारे ये तो हमारी संस्कृति में पहले से ही है कि हाथ जोड़कर सत्कार करना, हाथ मिलाकर नहीं हाथ जोड़कर सत्कार करना चाहिए, दोनों हाथों को नम करना चाहिए, नम करना चाहिए और झुक के
3: झुक कर,
0: हाँ ये सत्कार होता है।
3: बस यही तो है संदेश, पर
0: यही तो संदेश है,
3: हर कोई सुख के चाबी ढूंढ रहा है लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है।
0: हाँ।
3: और यही खोज में हम रहे हैं। और राजेंद्र जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप दूसरा गाने की ओर बढ़ रहे हैं, पर अभी तो हमें नमस्कार तलक हम पहुंचे, क्यों ना तीसरा वाला के बारे में कुछ और।
0: उपसंग्रह गण,
3: उपसंग्रहण, तो इसके बारे में क्या हम सब।
0: उपसंग्रहण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग विद्यालय में गए या हमारे कोई गुरुजन थे
3: जी,
0: या कोई बुजुर्ग मिले जो हमें आशीर्वाद दे सके, उनका हम लोग पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्गों का या शिक्षकों का हम पैर छूते हैं और अपने उनका हाथ अपना आप उठ जाता है आशीर्वाद देने के लिए, तो उसको उपसंग्रहण बोलते हैं।
3: जैसे हमें किसी अपना
2: जैसे आपका पुत्र आपका पांव छुए।
0: हाँ।
3: शांता जी ने कहा आपका पुत्र आपका पांव छुए तो
2: तो आपका आशीर्वाद देना चाहिए,
3: आशीर्वाद देना चाहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों
0: आशीर्वाद देने के लिए आपने सुना होगा भगवत गीता में या महाभारत में आपने देखा होगा
3: जी,
0: कि जब द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे पांडव, वो पांव छूते थे तो उनका ऑटोमेटिक अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठ जाता था।
3: हाँ जी।
0: तो भीष्म पितामह यही कहते थे कि तो दुर्योधन को यही समझाते थे कि तुमको उनका सत्कार करना चाहिए ताकि उनका तुम्हारी रक्षा के लिए हाथ ऊपर उठे उठा रहे। तो बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है इस प्रकार से उपसंग्रहण की।
3: तो दोस्तों यहाँ भी एक संदेश आया है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर और कदम पर हमारी सीख, हमारी सोच और हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म होता है, और हम कैसे अपना और कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारा और भाग्य हमारा जो मिलने वाला है जो हम उसी प्रकार से मिलेंगे। आज हम औरों के आदर करेंगे तो कभी हमें भी इसी प्रकार से आदर को जरूर प्राप्त होगा और औरों भी हमारे आदर करेंगे। राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है, पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं आप और शांता का और जो लेकर आए।
0: गीत का बोल है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, तो इस पिटारा से हम इसको छोड़ते हैं आगे की तरफ। और शांता जी का जो पिटारा है वो काफी बड़ा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है पिटारा।

0: रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा कूड़ा करकट, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र जी ने सिया को यानी कि आज से जो त्रेता युग में ही कह दिया था कि आगे कलयुग में कैसे होने वाला है, तो आज देख ही रहे कि हंस जो है वो कूड़ा करकट पे आ गया है और कौवा मोती पे आ गया। हंस चुगेगा कूड़ा करकट, कौवा मोती खाएगा। तो रामचंद्र जी ने उसी समय ये बात कही दी थी। संजय जी, आप कुछ चर्चा करने वाले थे इस विषय में?
1: चर्चा तो जरूर आपने कहा कि चर्चा करने वाले थे, तो दोस्तों जरूर चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सुंदर गीत को सुन के इसमें कितना संदेश है ना शांता जी।
2: हाँ।
1: कितना संदेश है इसमें। ये संदेश हमें ये यहाँ से मिलता है कि जमीन और मुकद्दर कि एक ही फितरत होता है, जमीन और मुकद्दर, जो भी बोया है वही निकलता है ना, जोंची बोयो वही निकलता है। ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करे, जाने का नहीं। और ये बात को हमें जानना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है कि हमें लोग हमारा इंतजार में रहे, ना कि अगोरे की भाई हाँ आ गया है, कब ये जाने वाला है ना शांता। कुछ बातों को मतलब है और कुछ मतलब के बातें, ये इसका अंतर हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये बात हो जाता कि जब फर्क यानी कि जब से ये फर्क हम समझा, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है। ऐसा है कि ना राजेंद्र जी?
0: हाँ ऐसा ही है।
1: और ऐसा भी है कि मतलब और स्वार्थ के रिश्ता तो कोयले की तरह है, कोयले की तरह। और कोयले के अंतर्गत में शांता जी भी कुछ सुनाने वाला रहा।
2: आप जितने भी पवित्र रहोगे ना, गलत लोग के साथ जब उठोगे बैठोगे तो आप गलत ठहराओगे,
1: गलत ठहराएंगे।
2: जैसे आप पवित्र होकर साफ सुथरा कपड़ा में, सफेद कपड़ा में आप जाओगे, ऐसे बोले काला कोठड़ी में जहाँ ढेर से कोयला है या कुछ भी है, तो उसमें आप सफेद साफ सुथरा नहीं निकल पाओगे, जरूर से एक दाग लगेगा काला वाला।
0: लेकिन जरा चाहे थोड़ा बचाए के जाना तो ना भी लग सके
1: तनी से बचाए के जाना। पर राजेंद्र जी यहाँ भी ये बात हो जाता है कि कोयला का बड़ा बड़ा बड़ा अच्छा संदेश है उसका। हमारे संतों ने मोई बढ़िया संदेश उसके लिए रखे है।
0: जरूर आप कोयला का संदेश दीजिए।
1: दे दू?
0: हाँ दे दीजिए।
1: दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब कोयला गर्म होता है ना, तो उसे छूने वाले को जला देती है। और जैसे कि शांता जी ने कहा कि जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले को हाथ
2: काला कर देते हैं।
1: तो ये बात तो बिल्कुल सच शांता जी ने कहा कि काला दाग लग जाता है, और इसे भी हमें जानना है और कैसे हम उसे बच सकते हैं। इसके लिए तो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में हम सब अच्छे अच्छे संदेश लेकर आपके लिए आते हैं शांता जी।
2: अनूप जोलाता जी भी एक भजन भी गाए है कि कालक से काली जो है वो कलंक है,
1: काजल से काला क्या है,
2: कलंक है।
1: तो शायद अभी हम सबको गीत को सुनने को मिले। पर राजेंद्र जी आज का संदेश में और क्या सुनाने वाले हैं आप?
2: हम ये पूछना चाहते थे राजेंद्र जी से, क्योंकि इस पे आप थोड़ा गौर देर प्रकाश करें तो अच्छा था, क्योंकि हमारे सुनने वालों को भी ये भी जानना चाहिए। और ये भी प्रश्न आए है कि अंतर क्या है या संस्कार क्या है, सत्कार क्या है और सम्मान क्या है?
0: संस्कार जो है वो हमें अपने बाल्यकाल से हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। यानी गुरुकुल में पहले जब आप स्कूल में जाते थे, गुरुकुल में वहाँ पे आपको संस्कार दिए जाते थे, और वही संस्कार जो आपको, मान लो आपको संस्कार 18 साल की उम्र तक जो संस्कार दिए वो पूरा लाइफ आपका साथ रहेगा। तो जो आपको संस्कार दिए कि सुबह माता पिता के चरणों छो, सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, योग करो, इसके बाद अपना पढ़ाई करो, फिर अपना काम करो, फिर शाम को खाना बनाओ या कुछ चीज़ लाओ, ये भी एक संस्कार में आते हैं,
2: यानी कि
0: हाँ एक सिस्टम में
2: ऑफ फूडिंग
0: ये सब संस्कार में है। दूसरा आपने क्या बोला था,
2: सत्कार।
0: जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया और आप एकदम, अभी जैसे बात चली रही थी कि सत्कार कैसा करना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए
2: जी,
0: दोनों हाथ जोड़ के उसको नमन करना चाहिए और उसको जल भोजन, जो जिस प्रकार का जो व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कुछ देना भी चाहिए, भेंट भी देना चाहिए, और कोई अमीर व्यक्ति आपसे केवल मिलने आया तो उसका सत्कार उस प्रकार से करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि जो भी आपके घर में आया, अतिथि सत्कार करना चाहिए। वो देवता, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई देवता आया है, जैसे आप उसका देवता का सत्कार करते हो, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, अर्पण करते हो, वैसे ही उस व्यक्ति का भी सत्कार करना चाहिए, वही सत्कार है।
2: अच्छा, वो सत्कार है जैसे
1: पर इस पे शांता जी, इस पे आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजेंद्र जी ने अभी कहे थे कि कोई आए घर पर
2: जी,
1: तो उन्हें सत्कार करना चाहिए, पर जाने का जब समय आया, जो घर को छोड़कर जा रहे, तो क्या हमें भी उन्हें दरवाजे तलक पहुँचाना चाहिए या बस वो कामर में कह दे ओके दुई?
0: नहीं, आप उनको दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए, हो सके तो गाड़ी तक भी उनकी पहुंचा दीजिए, और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, तो ये पूर्ण रूप से सत्कार माना जाएगा।
2: वो सत्कार में
1: हाँ। यानी कि इस पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, पर हम सब ये इन बातों पे आजकल बिल्कुल सोचते नहीं कि पहले ऐसा होता था।
2: पहले ऐसा होता था,
1: हाँ
0: होता था और अब भी होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा
1: कम हो रहा है, शॉर्टकट हो गया,
0: शॉर्टकट हो गया।
1: हाँ
2: राजेंद्र जी, आप एक शब्द भी अभी प्रयोग की, अतिथि और तिथि, इसमें अंतर क्या है?
0: अतिथि मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति आया, वो अतिथि है, और तिथि यानी कि दिन बार जो होता है, तिथि मतलब जो हिंदी में बोलते हैं तिथि, आज कितनी तारीख है, तो हिंदी में तिथि अलग होती है और अतिथि कोई व्यक्ति आता है आपके यहाँ, पौना बोले
1: हाँ पौना,
0: वो अतिथि है, और तिथि जो तारीख होती है उसको तिथि बोलते हैं,
2: और अतिथि
0: पौना। तीसरी चीज, आप एक चीज और रह गई, वो बता दीजिए।
2: सम्मान के मतलब,
0: सम्मान किसी व्यक्ति को, जैसे आप कहीं कार्यक्रम में गए, वो आपको एक गुलदस्ता देते हैं या आपके शॉल उड़ाते हैं,
2: अच्छा
0: वो सब सम्मान में, तो व्यक्ति का जब सम्मान होता है तो वो भी एकदम खुले दिल से आपके लिए आशीर्वाद देता है या ब्लेसिंग करता है आपके लिए, और वो खुश भी होता है और आप भी होते हैं, तो सम्मान बराबर का, जैसे कोई आता है आप सोफा में बैठे और वो नीचे बैठे तो सम्मान नहीं हुआ, तो आप बराबर का अधिकार व्यक्ति को मिलता रहना चाहिए, आप सामने बैठे वो भी सामने बैठा है, दोनों बातचीत करा, ये जो कुछ भी भोजन किया और उनको आदरपूर्वक सम्मान से विदा किया, वो सम्मान होता है।
2: धन्यवाद।
0: क्यों ना इसी खुशी में हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: राजेंद्र जी, मुझे तो अवसर मिला ही नहीं कुछ बोलने।
0: जरूर आप बोलिए, आप बताइए।
1: दोस्तों, यहाँ एक संदेश आया है कि हर पेड़ फल दे, ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। राजेंद्र जी, गीत चला दीजिए।
0: हाँ जरूर।

बहुत बढ़िया, जो अभी आपने गीत सुना है बहुत ही अच्छा रहा। और अब संजय जी, अब हम लोगों का समय काफ़ी नज़दीक है।

0: तो क्यों ना अब हम विदा की ओर बढ़े, और आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: राजेंद्र जी, जरूर कहना चाहूंगा, पर क्या कहूँ, ये तो भी जानना चाहिए कि क्या कहना है।
0: हाँ, तो जो आप कहना चाहते हो तो कह डालो।
2: कह डालो, आप क्या कहना चाहते हो?
1: भाई बस यही कहना चाहता था कि हमारे जीवन एक ऐसा, इस संदेशों को सुन करके हमें एक पके हुए फल के तीन पहचान होते हैं। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। ये पहचान आपको कभी ध्यान में आया था शांता जी के नहीं?
2: हाँ, मैंगो उगरता को आम।
1: आप सीधे मैंगो पर ध्यान दिया।
0: नहीं, पका हुआ फल, जब फल पक जाता है
1: हाँ,
0: तो नरम हो जाता है, दूसरा मीठा हो जाता है, और तीसरा झुक जाता है।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ऐसा फल कभी नहीं होता, ऐसा झुका ही रहता है। तो फल का मतलब वही है
1: ना?
0: हाँ,
2: नम्रता।
0: नम्रता,
1: नम्रता।
0: तो व्यक्ति जब जितना बड़ा व्यक्ति आदमी होगा, वो एक तो नरम होगा, दूसरा झुक के रहेगा, और तीसरा
2: अहंकार से फूला
0: अहंकार रहेगा। अहंकार से खत्म रहेगा, अहंकार नहीं होगा,
1: नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे कि आपने संदेश सुने हैं कि इस तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति के भी तीन पहचान होते हैं, और पहली उसका नर्मता, जैसे राजेंद्र जी सुनाए, दूसरा उसके वाणी में मिठास आ जाता है, और तीसरा जो कभी ना अभिमान ना कभी यानी कि अहंकार से खड़े होते हैं, उसका उसमें वो आत्मविश्वास हो जाता है, जो आपके और सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं ना।
0: हाँ।
1: और ऐसे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं शांता जी क्या कहने वाले हैं। राजेंद्र जी,
2: शांता जी तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं और घड़ी हमारे तरफ देख रहे हैं,
1: और
2: तो
1: इशारा कर रहे हैं राजेंद्र जी की बटन दबाओ,
2: लागे छूटे ना।
0: हाँ, तो हमारा जो इस कार्यक्रम का समाप्ति की तरफ आता है, तो लागी छूटे ना, सबको पता ही है, और हमें पता भी चलता है कि अब हम लोगों का समय जो है अपना समय बता रहा है, समय अपना समय स्वयं बता रहा है।

लागी छूटे ना अब तो सनम, ये गाना जैसे ही आता है सब लोगों को लगता है कि अब हम लोगों का प्रोग्राम डाउन होने वाला है। तो रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी कि राजेंद्र सिंह का हार्दिक भरा नमस्कार। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि।

सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। सुने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम, और हम आपको भी बहुत से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए, सुनने के लिए। जो ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म होने को आ गई है, इसके बाद हम आपसे

जिंदगी छोटी नहीं होते है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंचे हैं, आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। हमारे साथ देने वाला शांता खेमाई और हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी जो पैनल के पीछे बैठे हुए, और मैं हूँ आपका सेवक संजय, सभी को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ और फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

क्योंकि इस बात को भी हम जानते हैं कि जब इंसान का वक्त और हालात खराब होता है तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फसल जाए पर जुबान को कभी फसलने मत देना। जैसे पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जबान को काबू में रखना, ये बात तो आपको भी पता है।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

ऐसे किए भी आपने सुने? नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

ऐसे आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं, छोटे छोटे शब्दों है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है, सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

कि जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

बात को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हबन इन लेफन

कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो। और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं? क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो। और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

सफर कर रही है और हम क्या करते हैं। हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? कि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

हिंदुस्तानी रेडियो है। आप हमारे पास जरूर स्टूडियो में आ सकते हैं। हम तो हर वक्त चाय तैयार रखते हैं। चाय तैयार रखते हैं आपके ही मुलाकात की फुर्सत नहीं।

आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

zeggen. Maihuna. ये तीन छोटे छोटे शब्दों शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा। जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। माँ बाप कभी गलत नहीं होती, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

पे जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

कि इस बात को भी याद रखना हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है।

हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है, दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीभ पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं, गुरुजी ने इस बात को कहे थे, कि पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

है क्या? बचता है कि सबर करना सीख लो, सबर करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पुत्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। करते क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाते हैं। तो दोस्तों, बोझ सिर से ना ले, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।

तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूं आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

इसे दोहरा दिया जाए। क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वाला, हमारे देश में भी कुछ पुराने फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुराने फिल्मों के नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले सिलसिला इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा। यीशु के बगैर

0: उसके बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के और हम बढ़ेंगे।

हाउसफुल 5 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

प्लेलिस्ट 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में। एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, द यार 70, द यार 80 en 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

खुश हो अच्छे बात है, आपकी वजह से कोई खुश हो ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना, कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनो लो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good

दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि वे महान है क्योंकि वे ऊंच पद पर है या ऊंच विद्वान है, और इसलिए भी कि वे अमीर हैं। ये सोचने के बहुत सारे कारण हैं मित्रों कि वे बहुत महान हैं। लेकिन आप केवल तभी महान हैं जब आप अपनी खामियां देख सकते हैं। महान तब है जब आप उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तब है जब आप दूसरों को उनकी खामियां के साथ स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। तब आप न केवल महान हैं बल्कि महान भी हैं भगवान की नजर में। क्या आप भी एक अच्छे इंसान हैं? क्या आप में है ये गुण? और यदि आपके पास है तो इसी तरह आगे जीते रहिए, फिर मृत्यु के बाद भी आपको एक महान अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाएगा।

दोस्तों, सुखी आत्मा कौन है? मैं कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं। नंबर एक, एक खुश आत्मा दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देती है और इसके बजाय खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे नंबर, एक खुश आत्मा वो है जो लोगों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। नंबर तीन, सुखी आत्मा वो है जो ये समझे कि हर कोई अपने हित में सही है। चार, एक खुश आत्मा वो है जो जाने देना सीखती है। एक खुश आत्मा वो है जो किसी भी रिश्ते की अपेक्षाओं को त्यागने में सक्षम है और देने की प्रवाह करती है। नंबर छः, एक प्रसन्न आत्मा वो है मित्रों जो ये समझती है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी शांति के लिए करते हैं। मित्रों, अब आपकी बारी है कि इसे लेकर आप क्या करेंगे?

मित्रों, जब समय खत्म हो जाएगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा, वो समय फिर वापस कभी नहीं आएगा। अन्य समय आएंगे, लेकिन इच्छित समय दोबारा और किसी के लिए भी नहीं वापस आएगा। इसलिए क्रोध न हो और उन चीजों या लोगों में न फंसे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इसके बजाय आगे बढ़ें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं, चीजें जो आपकी जिंदगी बदल देती है। दूसरों के बारे में तनाव लेने से ज्यादा ये आपकी हानि करेगा। मित्रों, कभी भी अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद न होने दें, क्योंकि आप भी हर सेकंद के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। क्या आप कृपया इसे ध्यान में रखेंगे मित्रों?

भाई बहनों, जीवन कठिन है क्योंकि हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि लक्ष्यों पर। ये वह तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए सोच विचार कर करना चाहिए। मित्रों,

रेशु सर्वदा आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों प्रिय आत्माओं प्रिय भक्तजनों आपको हार्दिक से स्वागत है। एक बार फिर इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए एक बार फिर सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। नमस्कार, राम राम हो, शास्त्री अकाल हो। यहाँ से हम आरंभ करेंगे स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम दनाहमा का इसरात नंबर 6 से। दनाहमा का इसरात नंबर 6 से फाहोन हिंदू बास स्कूल फरेनखी अलखमेन हिंदू ओंदरवेस के तरफ से हम सर्वन करेंगे हनुमान चालीसा।

सुंदर हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम पेश किया गया है दनहाक मका इसरात नंबर 6 से हिंदू स्कूल फाहोन, फाहोन हिंदू स्कूल फरेनिंग अलगमेन हिंदू अंडरवेस के तरफ से। दनहाकी कृत इसरात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार नीदरलैंड से परिवार चांद कुर्बीन श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेंगे हम यहाँ से।

अति सुंदर अति सुंदर भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पेश किया गया है संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार परिवार चांद गुरबिन के निर्देशन में है। श्रद्धा भक्ति के साथ ये खूबसूरत दिवस में खूबसूरत भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। चिड़िया बोल रहे हैं रोटरडाम होगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रैट सेशन फेयर तक से सरस्वती माता भवन से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री राजकुमार महातम जी

सुदामा सेवनी करनारी।

विदिन घोराई की आवाज में सुने हमें कृष्णा कैसे सुदामा से अपने मित्र निभाए है, पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों दोस्तों फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में पेश किया गया है रोटरडाम होपफुली टेक्सस वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात से रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से आप सभी को एक शुभ दिवस पेश कर रहा है। देन हाग लेस्क फेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथहैंडल बेफे के तरफ से हम श्रवण करेंगे हरि दर्शन की प्यासी उस्ताद रामदेव चैतू का।

अवश्य हरि दर्शन के प्यासी है अखिया। उस्ताद रामदेव राम रामदेव चैतू के आवाज में श्रवण हमने की है, पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा खुरोथांदल बेफे के तरफ से। चले एक बार फिर देन हाखलाइस के फेन फोर पार्क से इस बार है सुंदर रोथांडल। सुंदर रोथांडल इन खुरुंते एंड फ्रॉइड इनका मालिक जो है जी हाँ परशुराम मोहनलाल जी, श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी के तरफ से हम यहाँ से है सरस्वती वन।

सुंदर अति सुंदर सरस्वती माता के वंदना यहाँ से श्रवण हमने की है। पेश किया गया है दनाखलास कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल एंड ग्रोथ एंड फ्रूट मालिक इनका ये है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। दनाखलास कफेन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव मालिक जो है हरिदत्त रोहित देव नारायण। खूबसूरत दिवस में सभी भक्त प्राणियों के वास्ते सभी सुनने वालों के लिए।

जिस घड़ी हम जाते हैं अपने प्रभु के शरण में, दया तो अवश्य ही करेगा। पेश किया गया ये सुंदर सा भजन मेरे प्यारे सुनने वालों, देन हाखलेस कैफे फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण की तरफ से। श्रीमती लैना बाबू राम जी, श्रीमती लैना बाबू राम जी देनहा के निवासनी है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते खूबसूरत दिवस में मंगलमय दिन होवे सभी के।

सूरज रतन, सूरज रतन राम बच्चन, सूरज रतन राम बच्चन जी की आवाज में ये सुंदर सा, अति सुंदर सा भजन हमको सुना दी है और पेश किया गया है देनहा के रहने वाली श्रीमती लेना बाबू राम जी के तरफ से। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। श्री नाम लिफॉर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में सुप्रभात मंगलमय दिवस कहते हुए श्रवण करेंगे हम इस बार राम दुलारी चुनी की आवाज में।

नाम अलीफोनो मैनकंडम हुक इंदिरा गांधी वेग से, श्री भक्तराज श्री शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर के तरफ से सभी को सुप्रभात सुप्रभात और मंगलमय दिवस कह रहा है। देन हाग से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी, श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से हम यहाँ पे भी श्रवण करेंगे एक सुंदर सा।

गयाना से अश्विनी गोपचंद की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब के लिए पेश किया गया है। दनहा के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से ये खास भजन।

धोखे में बीता जा रहा है उमरिया, इसे संभालो, इसे संभालो, संभालो, संभालो, नहीं तो यूं चला जाएगा, बाद में पछताना ना पड़े। बहाव छिनगू, बहाव छिनगू जी की आवाज में कि धोखे में बीते उमरिया, बीता उमरिया। फाहोन रेडियो की डायरेक्सी स्टाफ पर्सोनेल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों

अवश्य अवश्य, जय माता पिता, जय माता पिता। उस्ताद हरि शिव बालक जी की आवाज में हमने श्रवण की है, पेश किया गया है फाहोन रेडियो की दिराक्सी स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में। जी हाँ, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम हर सुबह हर रोज की तरह आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। देने सुनने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार इस वक्त के लिए।

प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फान के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए मेरे यानी कि शांता की, सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से आरंभ किया जाएगा आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम।

बात कहते हुए द नाखलेस के फेल फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथांदल बेवे के तरफ से श्रवण करेंगे हम हनुमान चालीसा।

राम, जय जय राम हनुमान चालीसा के साथ यहाँ पर आरंभ किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया है दनाख लेस कंफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा खरूथ हांदल बेफे के तरफ से।

शुभ लाभ होवे जरूर से, शुभ लाभ होवे हम सभी को आज इस खूबसूरत दिवस में, और ना सिर्फ आज ही के दिन बल्कि हमेशा हम सब के ऊपर गणपति बाबा का आशीर्वाद रहे और शुभ लाभ हमको मिले।

सा गणेश वंदन हमने श्रवण की है। देन हाखमा का इसरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाउन फरीनखिन अलखमीन हिंदू ऑनरवाइज की तरफ से। स्ट्रैट नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है श्रद्धा भक्ति के साथ।

सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में आपके लिए पेश किया जाता है। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है। Fijn voor Parks Zondag Groothandel. Zondag Groothandel in groente en fruit in Kamalik Johe Sriman Parsuram Mohanlalke.

द्वार खड़े दुखियारी, सुंदर सा बनवारी भजन हमने मिलकर श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है दनाखलाइस के फैन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल इन ग्रोथ एंड फ्रॉड मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी के तरफ से। रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों

सुंदर गणेश भजन फिल्मी तर्जनी मंडोले की धुन पर ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर श्रवण की है पेश किया गया है रोटरडैम होगफ्लीट टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात सेसफेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से सुप्रभात कहते हुए हमने श्रवण की है।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है, वो आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है।

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छे करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर, अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें ज़रूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें। अपना जीवन जो है सफल बनाए, भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान, जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना, तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारी, सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। हर नया दिन, हर नया दिन तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ अवश्य लाए।

ये सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं, और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना, आगे वाला दिन बे शाम होंगे, रात होंगे, ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Lief zijn tegen uw medemens en niet alleen tegen uw medemens. Maar lief zijn tegen alles. Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad. Lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben, dat we die kunnen inademen om ons anders stap te zetten. Aur kehta hai ki jiska jaisa charitra hota hai na, uska vaisa hi mitra hota hai. Shuddhata hoti hai vicharon mein, aadmi tab पवित्र होता है। नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नई, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नई और नजर कर दे।

सोलफुल सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुँचे।

सुबह की वही तुम्हारी नाम ले आऊं। सुबह की हवा तुम्हारा ले आए, सुबह की हवा तुम्हारा नाम ले आए, दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए। हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

तेताली पेताली गणपति बप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चून हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

प्रयागराज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर ली है। जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है? जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ, वो आप है।

Hare Keshava, Hare Mukunda, Hare Narayana, Hare Om. Het blijft een mooi bhajan. कहता है कि जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर दूर बन जाओ। और ये भी बहुत सुंदर लाइन है, सत्य वचन है दोस्त, कि ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। सुनिए, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। एक बज के नौ मिनट हो चला है आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम जहाँ से आप और मैं जुड़े हैं। हलफ नेक हो चला है जैसा आपको पता है ये रविवार से इतला किया गया था कि आज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ओफे ओपनबार फरफूर स्टॉकिंग में रहेगा। और वाकई में रास्ता बहुत शांत था आज सुबह में। पता नहीं कर्मचारी लोग जो दफ्तर जाते थे वो कैसे गए, पते ही का वर्ड था क्योंकि ओक वन हाउस आउट वर्कन en het werk begint bij heel veel plaatsen dan ook 8:30, 9:00. Staking is af en toe ook wel nodig om de staat ook wakker van te krijgen. Nee, toch je sarkar apan manmani ke bhi karte rahenge.

0: अरे अरे ए ए ए ए
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।

फिल्म आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा, और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

नदिया की धारा, सुंदर गीत किशोरदा और आशा भोसले जी की आवाज़ में, झुकती घटा गाती हवा। फिल्म धूल का फूल से सुनेंगे।

0: धूल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक सफर।
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
0: वही तो, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मैं नहीं जानती, आप तो भी नहीं जानती। फिलहाल

विज्ञापन यहाँ से हमने श्रवण कर ली है और आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर ये हसीन प्रोग्राम में, ये हसीन मौसम में। Let goed op jezelf, mijn lieve mensen, want u bent belangrijk. Hem belangrijk.

0: इंतज़ार जिनका था वो हाजिर हो गया है। तो यहाँ से हम बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ, और आप आकाश में हैं पंडित जी, स्वागत है आपको।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कुमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम भृगुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च उमयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वाहाय च सुत्राय च मोक्षोक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसारिक सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर यथायोग्य मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके राधे उफान को जो मालिक हैं मैं उनको भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो समय प्रदान किया धन प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितने आनंद ले रहे थे जहां पर संता जी ने रेडियो फान के माध्यम से कितने मधुर कंठ से हमें वापस कर रहे थे मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनने वाले हर बुध के तरह आज भी भगवान अनुकंपा की कृपा हुआ ताकि आप सबके बीच में कुछ ना कुछ संदेश में धर्म के यानी धर्म संदेश आप तक पहुंचा सके। हम गीता को जाते हैं। गीता के नौवा अध्याय में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं मैं सब वो बात मेरे ऊपर भी लागू होते हैं ना मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय है परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं भी उनमें भी प्रगट हूं। कौन कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान इसमें भक्त के भाव की प्रधानता है। भगवान सभी जगह विराजमान है किंतु बिना श्रद्धा के उनसे कोई कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता। और वही बात जाकर के जो कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं प्रभु राम जाकर के किष्किंधा में किससे कहते हैं हनुमान स्वामी बाबा जी से समदर्शी मोहे कहो सबको सेवक प्रिय अन्न गति सो कहने का आकाशवाणी के सुनने वाले ये है सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। प्रभु राम कहते क्या कहते हैं सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं पर मुझको सेवक प्रिय है क्योंकि वो अंतर गति होता है इसमें भाव ही प्रधानता है। अतः अपना भाव उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। सबको उत्तम भाव से देखने पर देखने वालों को भी लाभ है और जिसको जिसको देखा जाता है उसे भी लाभ है। इसी प्रकार दूसरे को यानी दूसरों को दुर्भाव से देखने पर देखने वालों को भी हानि है और जिसे देख जाता है उसमें उसकी भी हानि है। आकाशवाणी के सुनने वाले हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो गीता में बात तो ही बात रामायण के माध्यम से आपसे बीच प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। भाव से भक्ति होकर शरणीपन यानी शरी बन जाते अत इस तरह कहने और सुनने वाले दोनों को ही सेवा हानि का कोई लाभ नहीं है, ऐसे व्यवहार से दोनों का ही पतन है। अतः ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवहार, हम वहां भी जानते बात, उत्तम व्यवहार जिसके साथ उत्तम व्यवहार किया जाता है वो भी सुधर सकता है। एक व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं है और उसके हम विश्वास करते हैं तो दिन पाकर वो विश्वास बन सकता है, क्योंकि वो समझता है कि वे मुझ पर विश्वास करता है ना, कि वो मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे इनके विश्वास अनुसार ही रहना चाहिए ना। इस प्रकार हमारे ऊंचा भाव से उसका और हमारा दोनों का उत्थान होना संभव है। हमें सबको उत्तम भाव से ही देखना चाहिए। बात हमारे ऊपर भी लागू होते आकाशवाणी के सुनने वालों, हमें सबको उत्तम भाव से ही देखना चाहिए। अपने स्त्री पुत्र भाई बंधु मित्र आदि कोई अवगुण हो तो उसे दूर करने के लिए उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए और उसे गुण बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से उसके साथ अपना प्रेम बढ़ता है और उसका सुधार भी होता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को प्रेम के तत्व समझाते हैं। कौन? प्रभु राम। हम आगे बढ़ते आकाशवाणी के सुन उत्तर कांड को जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मान ना को दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कहने के साथ है प्रभु सेवका अवगुण कभी नहीं मानता, वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव का है। इस पे थोड़ा विचार किया जाए। प्रभु सेवका अवगुण कभी नहीं मानते, वो दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमलता स्वभाव के हैं। अतः हमें सबके साथ दया प्रेम विनय कोमलता त्याग और उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम जो ज्ञानी लोग हैं ना, तो अच्छाई देखते खराबी को उसको धारण नहीं करते। रामायण में हम आपने सुने ना, वहां पर एक हंस, एक चिड़िया का नाम हंस है, तो चिड़िया के जो हंस चिड़िया है एक पात्र में एक थारी में दूध और पानी उसे मिला दो तो आकाशवाणी के सर उस चिड़िया जो है ना तो दूध पी लेते पानी छोड़ देते हैं। कहने के तात ये है जो ज्ञानी लोग है ना, जो भक्त लोग है ना, तो अच्छाई लेके उसको धारण करते हैं, जो अवगुण उसको त्याग देते हैं। लेकिन हमारा आपका क्या स्वभाव होते हैं, कब हम जाते हैं वहां अच्छा जग चल रहा लेकिन एक ही गलती हुआ तो गलती का हम प्रचार करते हैं। रामायण गीता ही सिखाते हमें कि अवगुण जो है उसको हम त्याग दो, जो अच्छा है उसको लेकर के हमें धारण करना बहुत जन्मों के अंत के। कृष्ण भगवान कहते बहुत जन्मों को अंत के, जन्म में तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सब कुछ वो से देव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो बात अभी मैंने रामायण में कहा वही बात गीता में प्रभु राम कहते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं। हम वहां भी जानते बेर मैं बात दोहरा रहा हूँ कि समय मैं सब जगह मैं हूँ। फिर गीता में कहा गया है ये मम पश्यते सर्वत्रे, जो पुरुषम पूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझे वसुदेव के ही व्यापक देखता है। अखिल ब्राह्मण जो कुछ भी जगत है वो समस्त ईश्वर से व्याप्त है, कि ईश्वर से व्याप्त है। समझना चाहिए कि जैसे समझना चाहिए आकाशवाणी के सुनने वाले, जैसे बादल में आकाश व्यापक है ना, वैसे ही भगवान समय व्यापक है। अतः सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है और सबका आदर करना ही भगवान का आदर करना है। ये भाव भी बहुत उत्तम है। यदि ऐसे भाव भी ना हो तो सब भगवान के भक्त है या सब भगवान की प्रजा है, अतः सभी हमारे भाई है, इस प्रकार देखना चाहिए। क्योंकि सब ईश्वर के अंश होने से ईश्वर का प्रजा भी, तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें हम रुक जाते हैं। जैसे हम वहां भी जानते हैं कि दूसर के आदर करना परमात्मा का आदर करते हैं। एक बार आकाशवाणी के स्वर से क्या हुआ, तुकाराम आप जानते हैं ना, तुकाराम को, तुकाराम एक भक्त कृष्ण भगवान के हैं। तुकाराम रोटी बना कर करके और भगवान को अर्पण किया। वहां एक स्वान देव आकर के, वो जो रोटी है ना, स्वान देव कहते कुत्ता लेके भागते हैं, लेकिन तुकाराम जानते दूसर के आदर करना समय परमात्मा विराजमान है। तुकाराम दौड़ते कुत्ते के पीछे, हे कन्हैया रुक जाओ, झोर रोटी क्यों ले जाते, उसमें थोड़ा मैं घी लगा दू। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, जिसे हम कहते स्वान देव जो कुत्ते थे, वो जा करके प्रगट हुए कौन, कृष्ण भगवान। कहने के साथ ही कौन भाव से हम देखते हैं, तो कृष्ण भगवान जा करके उस स्वीकार किया। कहने के साथ ये है, जो भाव से हम देखते हैं भगवान, वही भाव से वही रूप हमें दिखाएगा। आकाशवाणी के सुनने वाले, एक बार ऐसे होते हैं कि तुलसीदास जी ने वहां पर मूर्ति, किसकी मूर्ति देखा, तुलसीदास जी भगवान को मूर्ति वहां पर देखते हैं। लेकिन वहां पर जा करके तुलसीदास जी कहते हैं, वो किससे तुलसीदास जी कहते हैं, कृष्ण भगवान का मूर्ति था, उनको प्रणाम करते, हमें आप, हम आपके देखना चाहते धनुष बाण से। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, वही मूर्ति जा कर करके, कृष्ण भगवान को मूर्ति जा करके किस पे प्रकट हो गए, राम के रूप में। तो तुलसीदास जाकर प्रणाम किया। कहने के साथ आकाशवाणी के सुनने लो, जो भाव से भगवान के जानते भगवान वही रूप हमें दिखाते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, युवानी द्वारा अपना परचर विराम करने जा, लेकिन इस पे ध्यान करना, सॉरी, प्राणी मात्र है अलग अलग, परंतु सिद्धांत मूलता एक है, जाति और मत अलग अलग है, पर मानवता एक है। इस प्रसून सब अलग अलग है, पर सब की पूजा एक है, दृष्टि व्यक्ति की अलग अलग है, पर ईश्वर एक है। हरि ओम, हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग्। हरि ओम, शांति शांति, हरि ओम। आप सभी को धन्यवाद।

जी हाँ, सुनने वालों से फन 3/9 हो चला है और श्री पंडित जी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और हम सब की सेवा की है। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है। गर्मी का मौसम है तो आप सुन रहे कि पंडित का गला थोड़ा से सूख गया था, ये भी एक चेतावनी है कि हम पानी अपने साथ रखें। हाँ, आज कल और परो हित खौलफ है।

Klanten met dynamische energiecontract betalen woensdagavond hoogste prijs ooit. Mensen met een dynamische energiecontract betalen woensdagavond de hoogste prijs ooit voor een kilowatt elektriciteit door hitte en extra vraag door hitte en extra vraag naar elektriciteit voor koeling loopt de kwartierprijs op tot een recordhoogte van 1,20 euro per kilowatt. न्यूज में आप सुने तो यहाँ से मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ और वो ये है Duitsland wil pensioenleeftijd verhogen tot 70 jaar. Duitsers moeten in de toekomst waarschijnlijk langer doorwerken. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar. पहले कहाँ 60 jaar था, उसके बाद 65, nu 67 en dan willen ze nog naar 70 jaar. भला सोचो हमारा क्या होगा जो व्यक्ति काम करता है, कब अपना जिंदगी को वो खनित करेगा. तो इसलिए ना अगोरो पेंशन मेरे दोस्त, ना अगोरो पेंशन. पेंशन पता नहीं हम देख पाएंगे ना या नहीं. बस आज से विचार करो, अपना जिंदगी में कुछ हंसी खुशी लाओ, जाओ यात्रा पे, जाओ छुट्टी मनाओ. ये ना सोचो कि 60 या 70 तक, 70 होएंगे या 70 तक होएंगे तो हम कुछ करेंगे. वक्त निकल जाएगा, सेहत जो है वो आज जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन हमारा शरीर का अदलाव बदलाव होता है ना. जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसको भी हर रोज नया नहीं रहता, उसमें मांग का मेहनत भी हो जाता है. इससे भी हमारा शरीर है वो युवक नहीं रहता है. एनर्जी दी नेम्ड ओक फन तैत तैत अफ कि जब तक एनर्जी है एनर्जी करो.

हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकंती ट्विंसेस तक ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

चक्के पे चक्का फिल्म ब्रह्मचारी से सुनाई दी हमको मोहम्मद रफी जी, साज और संगीत शंकर जय किशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले, फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

गगन के तले, नीले गगन के तले सुने हम, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

哇，给你们 awesome, awesome, lovely, awesome。थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज़ में।

बरसात की एक रात से लता जी की आवाज़ में श्रवण की है हमने। कोई चांद सितारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से प्यारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से भी प्यारा है, जो दूर रह कर भी हमारा है। जी मेरे सुनने वालों, जो दूर रह कर भी हमारा है वो नाम सिर्फ तुम्हारा है। आपने ठीक सुने। दस मिनट बाकी है 10 बजने में।

इसी गीत के साथ मैं आपसे रुखसत होंगी और फिर आपका आशीर्वाद रहे, आपका प्यार रहे, तो आने वाले समय में जरूर से आकर यहाँ पर रेडियो पे सेवा करूँगी आपके। तब तक के अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और ये दिन जो है प्यार से भरे रहे। गर्मी का मौसम है, अपने आप को भी ख्याल रखना। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी नमस्कार।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा प्यार की पैगाम।

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश की और अन्य देश के और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रोस्तक से सुनाएंगे।

तुम है हमारी जनता। अब देखो भैया सूरीनाम में नवा रखेरिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और ओ सब लाइफ मार मेंज हीरेदार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो अरे भैया पास्टर है मैया तुलो जानो ये हुई मैया है का बोले एगो पास्टर है तो एक के सबन मांगे है रखेरिंग रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलान के और एनडीपी के रखेरिंग गर्गरी रुसलान और जीमोन एक के बनूम करी से मैया के इसराइल के अम्बाजादर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पार्टी है और फ्रैक्सी लीडर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हार्जो पेयल के बोले सबन बहुत फरबास है कि रखेरिंग जो है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकल यारन पार यार खलीद इला पालास्टाइन के एरकेन करे से जैसे को देश और बोले तो इस अब का करे है जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बनूम करी से हुआ रेसी देरेंद अंबासडर फॉर सूरीनाम से फॉर द स्टेट इसराइल। तो मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले है गा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालस्टाइनन फॉलकोमन इन स्ट्रेसन में नॉर्मन एंड वार्डन फॉर सूरीनाम एकर मारे में मेल्विन बोफा बैटलांसे साके और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्तांड बिलैटरल रिलेशन विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन geïnitieerd en die nog lopend zijn, boze Israël, boze ja, projecten krijgen, boze hem lukke contacten hebben, te boze kiezen naar krab, te boze ga landbouw, boze landbouw initiatieven, projecten gezondheidszorg, boze campus van universiteit, voor vloeien van uitbestaande relatie, doen hij Israël, kerbaar in bouwfa, boze hij, volgens de minister in het standpunt van Suriname uit 2011, onveranderd, boze hem lukke hij, NPR-fractieleider Pavi Reggio stel dat Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemdt hem daarom dat de regering die Israël mee en die ambassade dure heeft meegeke. Bolle in maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezen dat doodstraf doet gelden uitsluiten voor mensen door het etnische groepen, religieuze geloofvoertuigen, de Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 meer. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft, diplomatieke relaties uit Amerika, Zuid-Afrika aangeklopt. Toen ik er waren bolle 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten naar Chahin. Hamluk ambassade hoe naar Chahin ga. Omloon toen jane hega Israël. Palestijnen ke uiteraard die musulman ke hoa dagi se. Or toen jane hoi somo harjo. Ubi musulman hei. Or ekwa malai bhi musulman hei. To us heb natuurlijk voor de moslims heeft ze opgenomen. Ki Palestijnen ke dagi से इतरा ढेर और बोले हम लोग के यहाँ के अंबासादर जाएगा हुआ इसराइल में और बाउफा बोले है इसराइल के बोले कितना प्रोजेक्ट अब नीज सूरीनाम में चले है बोले हम लोग के खादनु साख लिखेगा NDP-parlement EBI Joon verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM-landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM-landen, inclusief Suriname, zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen. To EBI Joons, wie willen het Chahinga? Ambassadeur hoe dreken
तो एक बारे में भैया हम जाइला सूरीनाम में बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर एगो देपे भैया अख्तन डरत एगो ए हाफिरन डरत और दे टू फेरत ई सब भैया दरेक्स के बारे में फरदोफन मिदल भैया एंड दे नेमर अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन को अंदर ऑफिसर स्कोतुरा भाई द ताल alleen bij brigadier Raaf van de politie is dit voorgelegd om sipahi abus heb onderzoeker in narcotica ke dan af de afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren hangende onderzoek door de politie kei dai hem chillai chillai bolila ki Suriname ke dheer sipahi ke bhaiya biswas na hai dekhyo mahanga mahanga o to chalave bhaiya puchhiye kitna salaris hai to us salaris se admi khali ghar chalai sake to tu kahan pehle baate itna dheer paisa aur jai ke baki hua pe bhaiya glat hai glat सिपाही इस अंडरसुक ना करे ब्लास्टिंग दिश और वो सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने कराका में जब सुनियो भैया ते कराका में बोले दृक्ष जरे हैगा उची युवा बड़ा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया हाँ अब जाइए भैया सूरीनाम से फरेनिंग फन इकोनॉमिस सा इकोनॉमिस्टन इन सूरीनाम का नाम बा फेस उसे बोलेगा बखरेब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वर्ल्ड वाइड बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंग के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festieven Debbie Persaat bole hega IBC me bole hega moeilijk na samaj pawe u ki kahe ke Starlink volgens hen voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet overal dure infrastructuur hoeven aan te leggen. To bari lamba chowra likhi se bhaiya fest ke bare mein. लेकिन न्यूज ज्यादा है तब देखो भैया हम जाए साउथ कोरिया में भैया हुआ के वो पुराना मिनिस्टर 25 बरिस के जहल पाई से साउथ कोरिया के बातचीत है 25 बरिस के भैया फॉर रोल इन नो टू स्टान के बारे में वो रोल ओके रहा तो एक 25 यार के बोले जोनी परसिस करी से काम तो हुआ के पुराना मिनिस्टर यूसी के साउथ कोरिया के ओका नाम बा Park Chung-yi बोले रेखबांग सौतन सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फान स्थान फान बलेख दोर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा प्रोबेद met de noodmaatregelen in het parlement buitenspel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea en alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal waar ze resolutie aannamen om de staat van beleg terug te draaien mensen bolle sleutelrol bij de toestaan de isep regering ke baantje te bhaiya jahan pe tu jane ego baithe ek wa oise kare hai to ye baat hai hamare janta South Korea ke bare mein to hamare pyare mausi lon bhaiya और यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एक बारे में दीबतेर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे है और दरस आदमी मांगे हैं कि पालस्तीन के अने इसराइल के अम्बासादर बने के और
और यह मैयक के बारे में भैया बड़ी गर्मी है हाँ कोउदर रोड इन स्टेट्स मेर यूरोपी से लंदन फनवीक एक्सट्रीम है तो गर्मी बहुत है नीदरलैंड बोले फॉर ऑल्स नो स्प्राके इस फन कोउदर ओराइया यहाँ पे नीदरलैंड में कोराइया है और आए हैं वर्ड इन स्टेट्स यूरोपी से लंदन कोउदर रोड अफगेवन वीक एक्सट्रीम है इटालिया में भैया बोले हैं बोले इन मेडस 15 स्टेट 15 शहर में सेवन कोउदर रोड करी से रोमन में मिलान से इन वोडस अपखरूबन बोले तेजस वर्म्स दाग दिले बिनन तबले इवन भीतर घर में रहिए और बोले जियो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder de hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hoe via Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte se ban hoe je he. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe paure via de paard. और बोले फ्रांस ऑथोरिटी तो वास्क्यू करे है कि जइयो पड़े पौड़े तना बुड़ियो जा ऋषि को बड़का है फॉर द आइड्रोकिंग फ्रांस के रेक्टर वेर तैदक आइज के स्काकल ओम दैट इट कूल वाटर द वार्म वास गवर्डन के रेक्टर जे ने बोलो के बंद करी से बोले पनिया गरमाई जा है औ इन बेल्जियम इस हित क्राइसिस में से बोले दिखतर बे इस एक्सट्रीम हित बेल्जियम के रखे बोले मंगलवार के वो कृषि सेंट्रम खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले के कूलर रहे 25 रात अब दैट इट अ सोनलक वार्म मेंस मेट्रोलॉजी के दिन मेल के बोले फन वीक द हिट इज दार कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में अफगलोपन वुड्सडा कोड ओरेंज रहा द वास्क्यूइंग ड्यूट इन ईदर गेवाल tot in donderdag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd, mensen. Het raakt garmie heen, Europa mee, euro aanploen bij. पानी पिए में खिलवाड़ न करिए दोस्तों हम भी यहाँ पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो हैं रुसलान भैया उक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एके उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहाँ उल्टा चीज हुई है भैया उक्रेन अब की तरह ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफाल करे भैया राफिनार रही दागे तो ई दागे तो ऊ दागे है तो यहाँ पे बताए गए है द्रियन ट्वेंटी यूनी के बात है और बोले हैगा फर्स्ट रुसलान में उस रुसलान में इस द फेर को of aan particulieren aan banden gelegd. Op die manier willen de lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen zijn brandstoftekorten. John Rusland etra jabar teel dunia bhar mein export karat raha. Een van de grootste exportland raha teel ke. Ab ohi ke des mein teel na hai bhaiya. Teel bole hai bahut kamti hai. Aur bole saban hamster kare omdat Russische raffinaderijen gohega Oekraïne op een drone se dag ke ook chitradise aur Russische raffinaderijen worden al mander onder vuur geroemen Oekraïense leger se aur volgens Andri Melik de permanente vertegenwoordiger Oekraïne ke bij de Verenigde Natie is 40% van het totale aantal raffinaderijen in middel beschadigd dobole hierdoor Rusland ke raffinaderij capaciteit flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen. Toen itra jabber bhaiya op de Rusland op een teel op een heen en meek naar de paarwe heeft. Daarnaast worden ook aanvoerroutes
motors van brandstof verstookt. Jahan jahan stil was hem leja hai. Ohu ke Oekraïne dagen hai. Rusland bole hai skier eiland. De Krim is de verkoop van brandstof daardoor volledig stilgesteld. Ik ook Krim mee. Wapen Rusland leler ha. O tilker ohu in de ban hui ge hai. Or ik er baren mee. En de regio Vladimir ten oosten Moskou mee. Krijgen de hulpdiensten vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldde governor of Telegram. John en Mick Hetty kreeg ook eens van Teel de Win. Ik ga ik weer naar jij de zoam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bolle auto kan titelen je regering, bolle Poetin geven, bolle ik ga Teel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort, waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd en is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met bietokken te maken tellen jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Higa Russische regering oliemaatschappijen kebole om ervoor te zorgen die constante aanvoer van brandstof blijft. Bole Higa ondertussen Oekraïne door aanvalkere Russische tilpe orgaskele installatie waaronder raffinaderijen, bollehega fabrieken, jetrahega exportterminals gewoon door. Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen. Om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel ik zeg nou ook een Oekraïne banaan zeggen. Drone ook okay, op een eigen fabriek. Maar ja, op de ultaatje joa hoe we gaan. Raffinaderij gaan. Sapke als hij dag dag. Of Oekraïne plaatsen krijgen. Oekraïne wil die militaire druk doen hangen. Bolle gepaard gaat met diplomatieke druk. Die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken. Oorlog bolle hem ik had kreela. Die Moskou doen in Rusland. Die oorlog wou ook het jij ben kreeg hem los. Herhaalde melding maandag bij de VN. Gebeurt dat niet, dan overweegt Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front al ruim een jaar op tafel ligt. Bolle Rusland bolle namange he double i hem loke manier hega ki hem druk karela ki oorlog wa ban kar Oekraïne anders gaan we door. De impact van de militaire druk op Oekraïne lijkt ook de Amerikaanse president Donald Trump niet te zijn ontgaan. Vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten. Voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht. To ye baat hai hamare janta कि अब सब चीजों उल्टा हुए लगल है Oekraïne juist aanval kreeg Rusland koeper en Rusland mee teelol naar hege bhaiya bole landbouwers ke voorrang hai en bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen. तो हमारे जनता और आगे को हम अपना प्रोग्राम को लेकर और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के बड़की बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन बड़की हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का बड़की और बोले हैगा बेतोन ब्रिज ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस हुआ हुए है और बोले बड़की बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट खलन अपार्ट फरकेस मात्रिकलन और बोले उस सबके बड़की ना बोले हैगा गebruik maken बोटर से हाईवे के ऊके ओरस स्वास्थ्य के चाहे जाय के तेगो लंबा रूट आदमी लोग के मारे के परिगा हमारे जनता। तो अभी आप लोग को और आगे के बातचीत हम बताएंगे हमारे जनता कि और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिशन दू द्रेंगन अप्रूव आन फी
IV verplichtingen. तो बोली जॉनी ये क्या होता है? तो ये होता है कि एंटी करप्शन वेट जो नहीं होएगा 13 अप्रैल 2027 तक में ड्रेगन अप्रूव करी रहेगा कि जो पब्लिक फंक्शनरेशन हैगा बोले हैगा दी ऑफ ग्रॉन फंड एंटी करप्शन वेट verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen. Bolle het jetra lantike admin he functionaris he. Bolle verplicht hega anticorruptie wet se. Bolle ego verklaring afleg kareke. Ki kaha pe tu i paisoon paile he. Fi IEV ke met de verklaring van inkomsten en vermogen. Bolle hega de ACC wees erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloop tot 16 augustus pahile tulukke chahin sabke melde karde weke aur ACC is het groot belang van de verplichting hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen aur deze gevolgen kunnen onder meer bestaan een strafrechtelijke voldoening de ikermane me verplicht is vanke augustus pahile sabke verklaar kareke ki kahan kahan pe aur tu isab chijon pahile baate एंटी करप्शन वेट के बारे में तो ये तो अच्छा बात है भैया मैं सब कुछ वहां बिकाऊ है भाई जे तो के पैसा है ते ई वेतवा भी तोर हो जाए ई तो हमारा सिरिना हम के विश्वास ना रहेगी हमारी जनता अब एक औरत भैया निकेरियानन के बात है निकेरी में दुई बरानी में झगड़ा भइल है भाई झगड़ा भइले सनिचर के रात के और नशान रहा औरतिया बस अपन घर में अपने आगे लगा दी ना अंदमिया भैया और अतिया लगा दी से और ये बातचीत हुए है शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो निखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडक इन द फ्लमन एन फॉलीडक इन फ्लमन वास ऑपकनोमन और एक बारे में निकेरी के सिपाही गईल है और कई फन एगो सोल स्ट्रात है तो वहां पे ये चीज भइले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाई तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भइले हम का कडल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में किसी भाई अपन फुरतोई में ली गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतईकन इस्लाह तो फरकलार दे देखन वो पुलिसी दैट एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइल है बैरखन सूप वेख में बैरखन सूप वेख में एगो जबरदस्त रूफ भइल है जहाँ पे देर तक दैसन एसएसडी सब लीग एगो ब्राउन फीस पे भाई फरदाख्तन दार में मांगतन तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई साढ़े तीन बजे दिन में के बोले हैगा रेड लंग समेसन ऑटो हाथ स्कोडर सास ऑप्शन स्कोट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen. De ego met dhire op een auto leed jaat raha. En ego skoude taas tangen raha, jo maa otra paisa raha. En chitte mek ego bromfiets inhaal karise. En bromfiets wa eke inhaal karke eker taswa leke peel bhagal bhaiya. Door de plotsingel achtki schrok de automobilis waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken. Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je bij ik hoorde maar toe, top en baat heb je, chal het auto maar ze is op geen lijst te kahen auto wel ik het door hele houd je ze bij

सुरीनाम का न्यूज और कुछ और देशों का समाचार हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे अफखसलोतन ब्रुक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो ब्रुक किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी से गा बोले तैने जो स्पूत ओफिल बोले हूं तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दम ब्रुक के गई ले हैं और बोले पुलिस पोस एवर अफकर एलकार वा नोडक बेतस्तान उजन ब्रुक किया बन करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया सुरीनाम में ड्रग ड्रग पकड़े हैं

और दोस्तों, जब जब तुमको देखा है रे छलिया, ये गीत आप लोग को हमने सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। अब देखो भैया, बेना लंग से एक आदमी काम उम करके आयल की का करके आयल है और ओकर कोई पलवार जाने की शहर में मर गए रहा। तो बोले अब हम जाई डायरेक्ट का बोले मट्टिया में। अब मट्टी अट्टी में उजाई के अपन का बोले सब कारबार करके अब बोले अब हम फ्राई हो गए। अब हम जाई तरी एगो कैसीनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गैल है मजे में एगो कैसीनो में, और ये कैसीनो में गैल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराख जीतल है, एगो खल बदराख जीतल है। और जब जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा। न तिलक तू जिले बाटे को 50 बरिस के आदमी बा। तो ये रमिया बड़ा मोह से गैल है तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम। तो गैल है एक दरी कुछ खा तो उतरा भैया। तो हुआ भेटान है एगो औरत के, और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा। जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भाई जा रमिया का फंसाई से। तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हो गया। रमिया दारू वाली भी पी से भाए। तो अब एक ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे। तुम समझ गए ना पलटन तिवारी वैख में एगो पेंशन है और गैल है पेंशनवा में। अदमिया टैक्सी शोफेर है, टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के और वो औरतिया के ले गए एगो पेंशन में पलटन तिवारी वैख में। तब दोनों में भीतर रहा थे। ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गए वही पेंशन में सूद गए, वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाए भी रहा। बस ये औरतिया का करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा। एकर पजामा टांगल रहा भाई जेस पजामा रहा और एगो ताश रहा सब वही में। ओकर का बोले है गई देंसी तेज कार्त रहा और खेल बदराख रहा एगो बैगताश में और दोस्तस कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना केतीरा सब लेके छोड़ी पेल भागल भाई पेल भागल है। तो आदमी ये जगल है तो देखे के पजामुए ना है भाई। पजामा मक्के जितना चीज सब इसे चुरा ले गई है औरतिया। तो इस गनमी गए है नानिश करी से तस्कोतू गए है पेंशनवा में पलटन तिवारी वैख में। तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसा ऐसे समय पे। तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है। तो कहते ही के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहाँ टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया सम वैरक करत रहा और जाई के पकड़ी से गा का बोले हैगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कहते ही के नहीं से पाई से भैया। और बतावे आदमी त्रासी फन पेंशन ब्लीक दा द कहते ही के फन टैक्सी वार में दे फरदाख्तन है ट्रेन फलित ओवर इन को में द टैक्सी दी है ट्वीटल एर्दर ना द पेंशन हाथ खबराख द स्पोर लेडर द पुलिस ze uiteindelijk naar de taxichauffeur. Tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden. Mensen, ouro, ouro, tiake, ouro, ik heb paige, maar ik zon nog een keer tia, tia, abena paise, ik heb bare meli voor nog eens bij 52-jarige taxichauffeur, ouro 25-jarige commerciële sekswerker zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pension in de resort Livorno. De twee zouden een man hebben besloten, bestolen van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en ziranen. Toe je laat door bij Geila Bahia. Kabele gok Geila gok kere na bij de kruising van Latourweg en Martin Luther Kingweg mee, waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijk geldbedrag won mensen. भैया लतूर फतूर तो हम लोग न जाइला वही बेनालान के जुगा रहा हुई और वो गए भैया। तो कर संगे ई दशा हुआ पे भैल है यानी कि लतूर पे। अब देखो भैया मुंगो के दो सेंतन मुंगो टापू के दो सेंतर भैया हक कॉमिनी तेरदन

बसलौता करे डायरेक्ट बारात में जाए के और बोले जब लेक हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के यफ्राओं में इस तलो बोले हम लोग काम पे ना जाबे और बोले देखा शाम लोग ऑन द वे इस बोन बोले वर्ष क्यों करे हैगा बोले एक्सामन वे रक्षा मीडन एन खफार कॉम एन एसन द रखेरिंग एन मिनिस्ट्री ऑन द वे इस वेतस्कपन एन कुलती द ओपरस्टान वर्गुडिंग uiterlijk deze week betalen बोले हम तो हम लोग के पैसा ना दिए तो बोले हम लोग ना जाबे और समय पे लड़कन के एग्जाम के प्रयोग है और एग्जाम बोले ना हुई पर बहुत बड़का हानि है और बोले हैगा बंधन बोले आप स्प्रेक करे हैगा एक्सिमिना तोरन के दो सेंटन ने मंगो तापु के कि यूनी में तो इधर फॉर लीडर सोडन से इन उत्पादन और बोले से स्टेलन एक्ट दा देश अस्प्रांग नित इस फॉर लीडर के स्नाह कोमन और इची युवा जब जब इरखेरेंगे वह बैठे एनडीपी के भैया तब ये फ्राउ में स्टेलन स्टॉकिंग करे है तो बोट वाल स्टॉकिंग करे है तो बिस ऑनर स्टॉकिंग करे है सब कोई अपन अपन पैसा ना पावे है तो सबके करे परे मेन से द बंधन फुरन आन टू अकितो आओ फीना उकाबर कोप क्राफ्ट वर्स्टर्किंग के पैसा ना पावे है दैट इज टॉक एरग मेंसे मेंसे मुते अखतर हुन एगन गेल्ड गान दी से वर्क हेबन ऑफ वार फॉर से रेक्ट हेबन द बंधन फुरन आन दैट टॉट न्यू टू स्लेक्स एन डील फॉर अ कम्युनिटीर्डन इन द बेटालिंगप्रोसेस इज मेगेनोमन और बोले एकर बारे में अंडरवेज बंधन बोले फॉल्स के BVL also do HOS en VWP eisen dat uiterlijk 26 juni se pahile chahin sabke paisa achterstallige betaling paisa chahin paanjai ke on bole hega do sender van Mongo Tapu ke baan chit hai jen Mongo me kaam kare Mongo Tapu me bhaiya to ye baant hai ki stocking wa ke chi jua aur bole phino aile tra gare me bhaiya ki sahara ke jo stof hai sar naam budal hai और यूरोपा भर में गर्मी है सोचो भैया फो बोले है फरवाक करे है ओवर वीकन वारम एंड ड्रूक बोले सहारा के शांति पुरुर के यहाँ आवे है मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 32-34 सेल्सियस द कॉम्बिनेशन फन हुक टेम्परेचर एंड हुक लुफ्टफुक्तिटी साल है आंशिक वारम अनफुलन मेंसे ये बात है गर्मी पाकिस्तान उधर भैया अलार्म करी से अपरे के अलार्म करी से पाकिस्तान कौन ची खातीन बोले फरमुद बोले मुखलग बोले फिर द अख्तर इन फोल्कन द यार में बोले जबड़ बरखा पड़सीगा ओवर स्ट्रूमिंग हुई द स्वामे बोले रंप बहेसिंग अथॉरिटेटन अतवार के अलार्म करी से करवाने में कि का बोले पाकिस्तान में उतना बड़का ऊपर स्ट्रूमिंग हुई बोले बहुत बड़का ऋषि को है बोले केक बोले मैंने नाम खबीदन हुंसा एन सर सर सर स्कार्डू ब bergachtige Gilid Baltistan in de provincie or bole worden als meest kwetsbaar beschouwd de Pakistan ke log jo wahan pe sabke regering alert kari se और बोले हैगा 2022 में इतना बड़का ओवरस्ट्रूमिंग भइल है जहाँ पे 1700 आदमी मरल हाँ एंड मेर दन देर तक मिलियन ऑन हिंदन हाँ और बोले टेम्परेचर बतावे है इतना जबर चढ़ी 48.5 ग्राद सेल्सियस हो जाएगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान बोले हाइस्फेस ऑनगेर 13,000 ग्लेशियर्स है हॉस्ट आंतर बैठन द पोल खबीदन और बोले है ऑनगेर 7.1 मिलियन मेंशन वोनन इन द नाबे ऑनगेर मेंशे और यहाँ पर बहुत बहुत लंबा चौड़ा निकल है तो जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ है आप जरूर अपने परिवार से वहाँ कॉन्टैक्ट करना द राम 2022 में बोले हैगा 11 मिलियार्ड डॉलर के हुआ बोले तू सेकेंगे रहा अन हेल्प ओम डोनर कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा इन 2023 वाज मेड यू 2005 वाज लेख ऑनगेर 4.5 मिलियार्ड डॉलर के बातचीत रहा हुआ हुई भैया ये है पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ के बारे में आपको हम बताते हैं तो दोस्तों
तालिबान तुलन जानो है, तालिबान एगो बड़का दिल्ली खाद से लेके जा है ब्रसल बेल्जियम में भैया एगो ओवरलैक है एयू से, बोले हैगा मेल्डन मेर्डन मीडिया डिस्टन यूरोपीय कमिशी बोले है तालिबान के बोले हैगा ऑफ आमतलक निफो और गस्प्रेक साल फोरन बोले कान है बसुक नोख नीत बफेसखन बेल्जियम मांगते सो मार्क बकेन करी से कि 5 eendaagse visa had afgeven voor een delegatie bole 5 rotjes op ke visum khali milal hai ego delegatie leke bole awe ke au bole hega ane brussel me bole commissie is al langer in gesprek afghanistanse regime se bole mogelijke terugkeer van de asielzoekers jo asielzoekers hega bole us op ke terug jai ke bole een delegatie van dagelijke bestuur van de EU reizen daarvoor begin dit jaar ook af naar Afghanistan. Bolle hega Europese landen, bolle Europese parlementen zijn zeer kritisch op een bezoek van de vertegenwoordiger van de vrede regering van Europa parlementariër. Op bolle hega D66 noemt hem bezoek een klap in het gezicht en een nederlaag voor onderwaarden verantwoordelijke economisarissen. Op bolle sabandamange het Taliban ke. Dus toe, maar ja, goed. Ze komen wel naar België, Brussel mee. तो हमारी जनता ये सब बात एक बयार्द औरत भैया सुरीनाम में ओके सब हंसे इवन से इवन तक या रखे और ओके जे फरसौरख कर तरह तुए इंदर तक या रख फरसौर कर सब के इस सब घर में रांत के कोलो निस्तन वेख में और रूफ ओवर फाल भैले दोनों के छोड़ी पिस्तौल दिखाई के और सेवन से इवन तक या रख बयार्द और ओके फरसौर कर के सब लूट के चल गए भैया यहां बताए दे कि Nelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en 2 paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen in onbekende richting. Toen zelf bejaarde ik ze gewoon tjoren na. Tjoren bija en dat is een Suriname mensen waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. I hega hamlukke hoofdwijk joraha. O hardem demonstreer karat raha. Curtis hoofdwijk bole hega. Aur u op een pro met ze mee nikar gehe dosto. Aapke bataye he. Ab ya bole actuele maatschappelijke en politieke situatie bole he. Bole telwa joon hamlukke nikari gehe kar matam na ki deswa. Hamlukke probleem met ze nikar dehi. Bole olieinkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bolle hega een belangrijk onderdeel van het gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke bolle game changer voor de Surinaamse economie, maar hoofdweg waarschuwt voor te veel en effort niet. Dat is een moeilijk woord gebruiker in Nikar. John, hamare janta bhi na samaj paaye waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kan zijn. Oh, is het zebe poetje, een moeilijk taal, dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken mensen, maar dat is weer iets anders. Van de Siroxweek erbaren mee bolen, ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal continu beleid straatarm blijven. Bole hamlo straat alam rabe ab dekho Guyana utra tel nikre mat tak ho pe garib ta ye ab tak hai hamari janta aur is ab Suriname ke admilon agore ki kab telwa nikre natulak us sab soche hai ki chijwa moi hui ab dekho bhaiya Saint Laurent aap lon jane albi nam to fir boat habda hue hai aur hua ke new fir boat 5 september mein shuru kari moi se chale ke aur bole hega jo habda hue hai Saint Laurent ne बोले हैगा अल्बिना से फलोप कंपन मेरे एरस्टक बपेरकिंग और एगो हैडो खफिर बहुत हैगा लाका ब्रिल 18 यूनिम बैटन गब्रेक हुई गए है आज को फॉलो फन एन इफेक्ट ऑन द हिड्रोलिसे पोम तेलक तगलेकरटेन हैव द सुरिनामस हाफन अथॉरिटी एन फास्टस्टेल द ड्राइवन द आनलेग स्टेकर ऑन द साइड ऑफ एन अल्बिना सोदानिक इज वर्सलेक्टर द देसे नीट लंगर वेलिग कैन वर्डन गब्रेक. Hierdoor zijn de reguliere afvaarden voorlopig opgeschort, mensen. Op pas september met Nauka Botia Chaliga. Ik erbij mee. Hoop is gevestigd op de tweede veerboot Malani, die momenteel onderhoud en technische voorbereiding ondergaan. Voorafgaan aan de ingebruikname zal eerst een testfase van
ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamare pyare pyare meetha meetha janta ke liye ye baat hum aapko batate hain. Saath mila ke arrestasi pakdi se drugs ke bare mein. साथ मिला के पकड़ी से भैया नारकोटिका ब्रिगेड बोले हैगा सात गो अरेस्टान से टीम ओपखरूपन फॉर verhoor verband met mogelijke onregelmatigheden 82 kilo cocaïne twee voertuigen betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie और साथ मिला के पकड़ी से जमा तीन गो सिपाही भी हैं advocaat Vera bevestigt desk aan de redactie van de Waterkant. Bolle het zevental zal voorhoor is aangehouden. Sipahi pakkerise sipahieke. Dien go sipahi pakkerane verzekerd gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van vertovende middelen. Deelname te sipahi sipahieke pakkerise bhaiya. To hamare Suriname je baant hier. Baal Argentinië bhaiya. Oro een van de hierpe bataye gaye hai. Messi ke bare mein. Weka top scorer hega aller tijden met 17 treffer. Oro Messi भैया अब तक है वार्फा रोनाल्डो इस ओखरसाग लियोनेल मेसी हैव अन geschiedenis geschreven mensen Argentijn ster speler maakte in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e 18e VK doelpunt is daarmee alleen recordhouder als topscorer aller tijden op het mondiale eindtoernooi ke bare mein to Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren mensen to ye baat hai ego mila ke snaipa bhaiya kono snaipa hai sipahiyo ke khojat raha wo ke pakdi se yahan pe dikhave hai session der tak yarakh sinango be bekend als snaipa so mar ke sanja ke ke pakdi se saman mein twee advocaten aangemeld bij de jeugdpolitie Suriname. Sociale mediafiguur werd al enkele dagen door de politie gezocht in zedenzaken. Ik heb minderjarige Larkieke bare mee. Na de aanhoudingen werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse OM Dosto. To aapko ye geet hum yahan sunate hain.

0: ना तो करो की तलाश है मन दी अशवोश्री का ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता, तो सबके लिए एक शेर हम यहाँ से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है, टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहाँ से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है, आओ मिलकर सुना जाए।
1: फिर मिलोगे कभी

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बनमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांध दो, फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेंगे भैया, हंडकड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौ के रसराज की कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं, कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों, और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिगेल लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई, जोर से ना बोलिए नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तो बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए धीरे से बोलिए।

धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए हैं उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नीखती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताएं थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सजनरी और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताए गए हैं कि झूठ मत बोलो, अगर जो झूठ बोलेंगे भैया तो कौआ काटेंगे। और माइती मुकेश इस गीत को आपको सुनाए हैं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, फनी खती होंद इन सेशन सेस्ट। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं। कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों। कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती। हम चाहते हैं उनको अपना बनाना, पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती। वो हमें चाहते हैं ने भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं, और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करें। दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले ये ओकर ऐसा गाना है, ये ओकर ऐसा गाना है। लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखतिन अख्तन जीवन तक का। और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं, और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं। और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो रमिया गाय से, वो रमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइती की लता मंगेश का ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों, और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों, और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है, और ये मूवी के नाम फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली, और ये फिल्म बना है 1963 में, और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है, और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन की डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

0: और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शख्स जिसका, छोड़ गई वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद देखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास। निखती हुंद एंड एन तख्त का ये गीत है जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।
1: जो चले।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हाँ प्रेम बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरी तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन से दी डेंक ए हमारा रिवाम कुछ भले नहीं मीन से आज से अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर ऑफ नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल की ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामिया तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे जो नहीं शस्तक का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गए है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत के ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का शायद।

मैं हर एक पल का शायर हूँ। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है, और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है। जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है। उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है। दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है। होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं। आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहान प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्दिग मोय दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोय। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो हम सबसे ज्यादा चाहने वाला, मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाला, मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर, जिस

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जमा ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ।

मसीहम और प्यार भरी खबरोगन जोंग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दोस्त सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी अवकांश से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी अवकांश से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए, फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी खती होंद एन एन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूं, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी और राज्य।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

गा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सैफ अंत का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54, यानी 450 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

हमारा फसाना मिट नहीं सकेगा जमाना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ

क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर। फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिल के आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि, यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी, था अच्छा अभी, हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने, यहाँ लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में।

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: ओए कठोर, तेरी कमर पे तो ये कमर बंद और भी सलमान जैसा।
1: अच्छा तो ये वाक्य आपने सुने ना, ये जब पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले, भाई ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा, ओ यारा, आपको सुनाया गया फाउन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हाथ रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेकन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश करते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला इकराम।

0: नाम।
1: अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हमने पेश की है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक ग्राम। सुनने वाले कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं, और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,

अभी आप सुन रहे थे बासी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाये सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली, और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना के जी ना लगे, अभी आप सुन रहे थे झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डाजी, क्या नज़ारे

झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है क्या नज़ारे, किशोरा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोरा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

सुख

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: शरबती तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज में। बुरे भी हम भले भी हम, द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक 2 मिनट बाकी है 11 बजने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद में आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार और फिल्म का नाम है कति पतंग। गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए, ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और जरा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

जो तू मेरा हमदर्द है, अभी आप सुन रहे थे सुनने वाले फ्रॉम द मूवी विलेन से हमने पेश किए है, और ये गीत खासकर कुमांग किए थे आयशा जी, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। अपना बना ले फ्रॉम द मूवी भेड़िया से आप सुनेंगे सुनने वालों।

भेड़िया है फिल्म का नाम सुनने वालों, और अभी आप सुन रहे थे अपना बना ले पिया, फिर भी मैं तुमको चाहूंगी फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड।

हाफ गर्लफ्रेंड है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। गदर 2 इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, चल तेरे इश्क में।

गदर तो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, तुम क्या मिले।

क्या मिले अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। शहजादा है फिल्म कराम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं छेड़खानियां।

0: फ्रॉम द मूवी शहजादा से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ, और छेड़खानियाँ के बाद फ्रॉम द मूवी गदर टू से आप सुनेंगे मैं निकला गरी लेके।
1: मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल लो।
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर टू। जुग जुग जियो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते दुपट्टा।

फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो से भी आप सुन रहे थे दुपट्टा, और दुपट्टा के बाद हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका।

अभी आप सुन रहे थे शो मी द ठुमका, और ठुमका के बाद हम बढ़ चलते हैं झुमका की तरफ। वो झुमका

Why chumka? From the movie Rocky और रानी की प्रेम कहानी, इसी फिल्म से हमने पेश की है What chumka? तुम झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं सुनने वालों, मैंने पी रखी है।

फ्रॉम द मूवी तो झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश किए है मैंने पी रखी है। टाइगर ट्री है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लेके प्रभु का नाम।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice day and take care of yourself. Till next time.

स्थानीय रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर है नतीलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम एना तिलक वेरक्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सोसोलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या इवेंट और खानिशात और जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट अलाइन कराना, यारो तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। यारो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेनेंस कंटोर यूरो ओपनर 70 3 62 2047, या तो आप तार करें ओपनर 70 3 62 2047 पर। जो भी रेडियो का काम हो, देन कन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना है, सॉफ्ट टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फिल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? तो गुजारित निवेदन और विनती किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द Fahun Hindustani Radio का मेंबर बने और को भी बनाए, क्योंकि आप अगर है तो हम भी है ना। वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं आप सभी को एक ही दम फिर प्रोग्राम की तरफ, और हमारे कुछ सरनाम के नगमे यानी सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। और अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड, किरण केदार जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में की बड़ी दूर से आए हैं।

मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड किरण केदार टुगेदर विद किंग सेलेक्टा बड़ी दूर से आए हैं सेलेक्टा बीट्स। अगला बयान साजन मोरे सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को, नीलम एफ टी सत्यम माता दिन मिलके सुनाते हैं म्यूजिक फॉर्मासी फ्री स्टाइल के सांच पर।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाए आप सभी को साजन मोरे नीलम और सत्यम माता दीन म्यूजिक फॉर्मेशन फ्री स्टाइल के संगीत पर। अगला बयान मशहूर कलाकार हमारे हॉलैंडिस का किंग सेलेक्टा के ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सामने मैं पेश करने वाला हूँ। मिलके सुनते हैं सोनिए मैशअप फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन सेलेक्टा बीट्स किंग सेलेक्टा सेलेक्टा बीट्स शो बैंड के ब्यूटीफुल साउंड और संगीत पर। मिलके सुनते हैं स्पेशल
1: सेलेक्टा जेरी बेस कॉन्सेप्ट

शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गायक और महान कलाकार हमारे ऑल इंडीज का किंग सेलेक्टा विद द म्यूजिक फॉर्मेसी सेलेक्टा विद शो बैंड के ब्यूटीफुल संगीत पर। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला फ्रॉम पाकिस्तान एंड हॉलैंड उस्ताद सागर मलिक भी कुछ सुनाने वाला है आप सभी को। मिलके सुनते हैं वे कमलिया।

थे अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को पाकिस्तान और हॉलैंड का मशहूर गायक सागर मलिक, संगीतकार सेलेक्ट बीट्स के साज पर। अगला बयान एक और महान गायक हमारे सूरीनाम देश का मिस्टर के कविश कलका का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग फ्रॉम द सूरी पॉप 2024। यू नंगामी ऑलराउंडर मैस्त्रो कविश कलका।

क्या बात है, अति सुंदर बयान यू नंग अमी सुनाया आप सभी को। महान गायक हमारे सुरिनाम देश का मिस्टर के कवीज कालका फ्रॉम द सूरी पॉप लाइव रिकॉर्डिंग। तो मैं पिपरी श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। जरा गौर फरमाए पुराने जमाने के कुछ मशहूर मशहूर लोगों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ विद्वानों ने हमारे मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमिल लेकर कि इन ज्ञान से भरी हुई बातें से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था डेगड़े ब्लेस पास्कल जी ने। आई वॉज एन फ्रांस विस एन नतुरकंद एंड फिलोसोफ एन लीफ दिन 1623 टॉट 1662। अब ब्लेस पास्कल ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो कि द फोर नाम्स द क्वाल फॉन द मेन्स इज सेन टोमलोस न्यूसगीरिगेट नार दिंगन दी है नीत कान दोरग्रोंदन। आगे में कहा है श्री इमानुएल कंट, है वॉज एन डाइट्स फिलोसोफ एंड लीफ्ड फॉन 1724 टॉट 1804। और इमानुएल कंट ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो कि Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Spinoza, hij was een Nederlands filosoof en leefde van 1632 tot 1677. Al Spinoza ne kahay manushya ke bare mein aroki, een vrij mens denkt aan niets minder dan aan de dood. Luce Baert, hij was een Nederlands dichter en beeldend kunstenaar. Leefde van 1924 tot 1994. Al Luce Baert ne kahay manushya ke bare mein aroki, schoonheid treft de mens met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Salomon Beer Oberdorf, hij was een Duits schrijver, leefde van 1870 tot 1940. Oh, Salomon Beer Oberdorf, nikahai manusje kebarme aruki, aan menig mens is niets zo echt als zijn masker. Dag Hammarskjöld, hij was een Zweeds diplomaat en van 1553 tot 1961 was hij VN-secretaris-generaal en leefde van 1905 tot 1961. Oudek Hammarskjöld, nikaha hij manusje kebarme jaroki. Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd. Een hele goeie hoor. Mashur Abhinetri Marlene Dietrich, in Duitsland geboren Amerikaans actrice, leefde van 1901 tot 1992. Marlene Dietrich nekahi hei manusje kebarmiaruki. Een mens moet bang zijn voor het leven, niet voor de dood. आगे में कहा है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था ये एपिक्टेटस। हे वाज एन रोमेंस स्टोइक्स फिलोसोफ एंड लीव्ड फ्रॉम 50 टॉट 130 ना क्रिस्टस। और एपिक्टेटस ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो कि हेट इज हेट वर्क फ्रॉम एन अनओपगेवुड मेंस

anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is. Zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding één aanvang genomen heeft, wie nog zichzelf nog een ander iets verwijt, diens opvoeding is voltooid. De laatste van vandaag, Kahae Bahuti Purane Zamanakadmi Ebita, Marcus Aurelius. Hij was een Romeins schrijver en leefde van 121 tot 180 na Christus. O Marcus Aurelius, Nikahae Manusje Kebarmearuki, verspil geen tijd meer met ruzie over wat een goed mens behoort te zijn. Wees er één. Ook een hele goeie hoor. तो हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप कुछ उदाहरण, कुछ कहावते सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। विवनत कुन लुइस्टर नारम पार सेर ले रैक सिताते दी ओवर द मेंस हैट गिंग। ये अश्वमेध लेकर इन बातों को मैं आप सभी को सुनाया कि इन ज्ञान से भरी हुई बातें से कुछ ना कुछ तो जरूर हम लोग सीखेंगे ना। तो प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाता हूँ, वारा के मुताबिक कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो अब जरा आप दिल थाम के बैठिए यारो, एक बिल्कुल नया आवाज आप सुनेंगे। महान गायक है ऐसा लॉन्ग डोर ब्रोक इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। नाम है इसका सरित दत्ता। Remember the name, he is a music composer and singer. Aur ye ti sundar bayan, een heel nieuw nummer uit 2024, geschreven door Dr. Uma Naveen Mehta. En natuurlijk gecomponeerd door de man himself, Sarit Datta. Aur wo sunate hai aap sabhi ko, mahaan awaaz ka malik, जन्नत मिली है। ब्यूटीफुल सॉन्ग मिलके सुनते हैं।

में जन्नत मिली है। नौजवान कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर, द वन एंड द ओनली सरित दत्ता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, और इस बार लाते हैं द क्वीन ऑफ मेलोडीज जमाने का श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। येमी येमी साथ दिया है मशहूर रैपर टाइक एंड राणा सोताल, जो मिलके ये अति सुंदर बयान को लिखे हैं श्रेया जी के लिए। येमी येमी, लेट्स येमी येमी।

ये मी ब्यूटीफुल सॉन्ग श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया इस जमाने का क्वीन ऑफ मेलोडी डेग्रेट श्रेया घोषाल जी और साथ दे रहा था टाइक द ग्रेट रैपर। कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुन रहे हैं। अगला बयान तुम बादल बन जाना दो मशहूर गाने वाले हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उभरते हुए कलाकार सृष्टि भंडारी और हरमान नजीम मिलकर सुनाते हैं विवेक कर के साज पर सौंदर्या सुराभी का लिखा हुआ ये सुंदर बयान।

तुम बदल जाना तुम। ये अति सुंदर बयान, दो नए नए आवाजें हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, सृष्टि भंडारी और हरमान नजीम मिलके सुनाया आप सभी को। विवेक कर अल्फाजे थे सौन दरिया शुराबी और संगीतकार विवेक कर के सांच पर। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ओ मेरे हम नवा। द सॉन्ग इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय संजीव चतुर्वेदी।

सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया, ओ मेरे हम नवा। इस जमाने का किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, जो लिखा है और कंपोज किया है संजीव चतुर्वेदी। समय पर प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और फॉलो करते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, आप भी जाइए, कुछ खाइए या कुछ पीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। तो इसी तरह से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं यारो, और यही आशा उम्मीद है कि हम लोगों का पेश किया हुआ जो कार्यक्रम होते हैं ना, ज़रूर आप सभी को पसंद आते होंगे। यही तो हम लोग सोच सोच कर आते हैं आप सभी के खिदमत में।

गालो मुस्कुरा लो महफिली सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं कर रहा हूँ द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ बनाए हुए नगमे और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एड फिल्म संजोग 1961। एक जबरदस्त कंपोजिंग ये महान संगीतकार मदन मोहन जी का भूली हुई यादों या ये एवरग्रीन सॉन्ग भी ये महान संगीतकार ने बनाया है माइटी मुकेश जी के लिए। मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो मदन मोहन, और आप सभी को सुनाया लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आई द फिल्म संयोग निहति एनन सिस्टर, एक और जबरदस्त शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान रख चुका हूँ आप सभी को सुनाने के लिए प्लेयर में यारो। और इस बार ऐड मूवी एक मुट्ठी आसमान 1973, संगीतकार का शहीनशाह और बादशाह द ग्रेट ग्रेट ग्रेट किशोरदा के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, जो बड़ी खूबी के साथ सजाया है ये महान संगीतकार जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, द ग्रेट मदन मोहन जी का।

द ग्रेट किशोर दा के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आज श्रोताओं ने सुना। आई डू फिल्म एक मुट्ठी आसमान 1973 कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। काफी दिनों से स्पेशल चल रहा है महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी। तो कुछ यादें मैं

0: सकता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
1: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनके पहले

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया।

अरे बातें, कुछ मेमोरीज आप श्रोताओं ने सुना मेलोडी क्वीन लता जी के मधुर आवाज में, और कुछ बातें खुद मदन मोहन जी ने आप श्रोताओं को सुनाया। एक बयान जो मैं आप श्रोताओं को सुनाने वाला हूँ, और वो खास करके मेरे दिल के बहुत करीब है और सुनाने वाला है आप सभी को। एक बार फिर लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की, हम चल रहे थे वो चल रहे थे। एक फिल्म दुनिया ना माने 1959, महान लेखक राजेंद्र कृष्ण जी के अल्फाजे, संगीत है महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी का। मिल के सुनते हैं स्पेशल।

एक फिल्म स्टूडियो के मालिक का बेटा, एक फौजी जिसने जंग के मैदान में गोलियां चलाई हों, वो बना लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। पूरा नाम मदन मोहन कोहली। मदन जी का जन्म 25 जून सन 1924 बगदाद में हुआ, जहां पर इनके पिता राय बहादुर चुनीलाल साहब इराकी पुलिस के साथ काम करते थे। बचपन से ही मदन जी को संगीत का शौक था और वो अपने घर में रखे ग्रामोफोन पर घंटों संगीत सुना करते थे।

जैसे ही इराक ने ब्रिटिश राज से आजादी पाई तो राय बहादुर चुनीलाल अपने परिवार के साथ वापस भारत आ गए और मुंबई में मदन मोहन साहब के पिता राय बहादुर चुनीलाल बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में पार्टनर बन गए। ऐसा माना जाता है मदन मोहन साहब को संगीत की प्रेरणा मिली उनकी माताजी से, जो खुद अच्छा लिखती भी थीं। और सन 1943 में अपने पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली, पर उनका दिल संगीत से जुड़ा हुआ था और पहला मौका मिलते ही वो फौज को छोड़कर चले आए संगीत की दुनिया में। और उन्होंने लखनऊ का ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, जहाँ पर उनके साथ थे उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर। साथ ही उनकी दोस्ती हुई मशहूर मारूफ गायक तलत महमूद से भी।

0: कुछ समय के लिए मदन मोहन साहब ने एसडी बर्मन और श्याम सुंदर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। मदन मोहन साहब के लिए लता मंगेशकर ने जितने हिट गाने गाए हैं उतने किसी और सिंगर ने नहीं। ये किस्सा भी मशहूर है कि कैसे लता जी और मदन मोहन साहब के बीच भाई बहन का रिश्ता पनपा।
1: पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया।
0: और मदन जी की तकरीबन हर फिल्म में लता मंगेशकर ने गाने गाए। इनकी पहली फिल्म थी सन 1950 की आंखें, उसके बाद जहां आरा, दुल्हन एक रात की और एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं।

मदन मोहन साहब ने मोहम्मद रफी साहब से भी खूब गाने गवाए और वो सभी गाने हिट भी रहे। ऐसा भी माना जाता रहा कि इन्होंने किशोर कुमार की आवाज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिल्म मनमौजी में नजर आता है कि किशोर कुमार ने भी मदन जी के लिए क्या खूब गाने गाए हैं।

0: और फिल्म भाई भाई में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन खूब चमका है।
1: मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल भर भर भर भर।
0: ऐसा माना जाता रहा कि मदन मोहन साहब की जो धुनें हैं वो लता जी के लिए ज्यादा सूट करती हैं, पर इस बात को इन्होंने गलत साबित किया जब फिल्म देख कबीरा रोए में इन्होंने मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल किया।
2: मन के द्वारे पायल की झनकार लिए।
0: यूं तो मदन मोहन साहब का संगीत परवान चढ़ रहा था, पर कभी भी उन्हें किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया और इस बात का उन्हें खासा दुख था, खास तौर पे जब उनकी फिल्म वो कौन थी आई।
3: ये

अगर हम गीतकारों की बात करें तो मदन जी के साथ सबसे ज्यादा काम किया है राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी साहब और राजेंद्र किशन जी ने। साहिल लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी उनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है, पर राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी और राजेंद्र किशन के साथ इनके गाने ज्यादा हिट रहे।

ये वो वक्त भी था जब फिल्म इंडस्ट्री की त्रिमूर्ति अपने अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स चुन चुकी थी। राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन जुड़ चुके थे, देवानंद के साथ एसडी बर्मन और दिलीप कुमार नौशाद साहब का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे दौर में मदन मोहन साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया।

मदन मोहन, सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे, पर इनके बीच में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि राज कपूर अगर फिल्म बनाएंगे तो संगीत मदन मोहन से लेंगे। दोस्ती जरूर कायम रही, पर इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया।

पर मदन मोहन साहब इस बात से खफा थे कि उन्हें अवार्ड्स नहीं दिए जाते। सन 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मदन जी अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे और शराब की आदत ने भी उनकी तबीयत बहुत खराब कर दी थी। और सन 1975 14 जुलाई को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए।

हर एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमेशा अमर रहता है, और ये बात मदन मोहन साहब के संगीत ने साबित की जब उनके बेटे संजीव कोहली ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा के लिए मदन मोहन साहब की कुछ खास धुनें ढूंढ निकाली। और अच्छी बात ये रही कि उन गानों में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़

मदन मोहन साहब का हर एक गाना ये बताता है कि ये मदन जी का अमर स्टाइल है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा।

0: बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप।
1: क्या बात है, हम किपफेल फ्रॉम द क्रैक हमारे भी प्रिय सुनने वालों, ऐसा संगीतकार बार बार जन्म नहीं लेता। हमारे भी प्रिय साथियों, यहीं तक था आज का ये स्पेशल महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश के समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत प्लीज।

तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 07-3-2-2-7-4 और स्टूडियो का तार का नंबर 07-3-2-7-20-77। खास फरमाई से हो या तो जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर, या तो जॉब ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट हो या तो शोज वगैरह, उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट अलायन कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप अजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलत एजेंस कांतोर यूरो अपने 07-3-2-2-7-40। तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzaris Binti die weten kia ja raha hai. Kia bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane. Aur ro ko bhi banaye. Isi tarah hum logo ke baare mein charcha karte rehna, reklama banate rehna yaro. Koti koti dhanyavad iske liye and a tilak. Love you all. वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए आवाजों की तरफ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, और अति सुंदर बयान कॉफर सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं न्यू स्टाइल पर इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट सूरज जोगन, सूरज जगन के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ही इज ऑल्सो अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ग्रेट सिंगर। तो मिलकर सुनते हैं दम मारो दम ऑफ सूरज जगन स्टाइल। यस yes.

सूरज जगन के स्टाइल में ये अति सुंदर एवरग्रीन सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना आज के ये हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है। अगला बयान एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफी दिनों बाद कुछ निकाला है, द ग्रेट कैलाश खेर के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान लिखा है महान लेखक इस जमाने का ग्रेट कुमार जी और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर मीत ब्रॉस अंजान। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे निशान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Great song, Mary Nisha, from the movie Oh My God. महान गायक द ग्रेट कैलाश खेर के मधुर आवाज में महान लेखक कुमार का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मीट ब्रॉस अंजान। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है, रात्रि का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुनाने को जा रहे एक बार फिर ये उभरता हुआ नौजवान कलाकार जो टॉप टॉप सॉन्ग्स अपने ही स्टाइल में एक नया कुर्ता पहरा देता है, तो मिल के सुनते हैं आवारा हूं को क्या धुन बना दिया ये द ग्रेट सूरज जगन।

0: Awara hoon.
1: Amazon shopping app.
0: In een nieuw jasje en gestoken door Suraj Jagan. Mahan gayak hamare Bollywood film industry ka is zamane ka. अगला बयान एक अति सुंदर बयान है नौजवान कलाकारा स्नेहा भट्टाचार्या जो नए नए अपने कदम रख चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में. लाइव रिकॉर्डिंग अति सुंदर बयान पहली जिंदगानी मिलके सुनते हैं.

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और वो भी स्नेहा भट्टाचार्या के मधुर आवाज में। फाइनलिस्ट ये

बेदर दया मशहूर गाने वाला इस जमाने का डेग्रेट रिक बासु फिनालिस्ट फन सारे गामा पा ट्विंटक द्री इन ट्विंटक उन्हीं के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आठ श्रोताओं ने सुना। एक और अति सुंदर बयान सुनने को जा रही है फिनालिस्ट सारे गामा पा ट्विंटक द्री इन ट्विंटक ट्वीड प्लेक एंड निष्ठा शर्मा जी के मधुर आवाज में हंस के मिलना।

हंस के मिलना था उसकी आदत, मगर मशहूर गाने वाली इस जमाने का उभरती हुई कलाकारा निशिता शर्मा जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुना। म्यूजिक कंपोज बाय अमजद नदीम अमीर और अति सुंदर बयान को लिखा है अजीम शिराजी। तो मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आप लोग एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और ही बहुत ही मशहूर गायक इस जमाने का, जो कुछ पुराने नगमे को नए धुन में और नए रिदम के साथ सजा देता है। रंग बरसे सूरज जगन ने इस तरह से सजाया है।

ये सुनील शेट्टी की आवाज है जो स्पॉन्सर है ये महान गायक सूरज जगन का, तो उन्हीं की आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना इन अंदर सूट रेतम यश। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं ये तक था आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जस, जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, आप सभी को जरूर कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 9 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर, और उसके बाद कुछ पुराने नगमे आप सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए। तो अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है फाउन हिंदुस्तान एडू का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो अमित कुमार जी, और उसके बाद बड़का भैया दिलीप रामाधीन जी, और आगे के रात्रि का कार्यक्रम जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो बुधवार रात्रि 9 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा सिर्फ पुराने नगमे लेकर। तो मुझे आप सभी आज्ञा दे, अलविदा कहता हूँ आप सभी को, और मिलते हैं अगर जिंदगी ने साथ दिया बुधवार को। जाते जाते कुछ गुनगुना देता हूं हमेशा की तरह ना, तो आज है ये, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. सोसो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग एंड टिल वी मेट अगेन आवाज के जरिए.

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रात।

फोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिलिक उक्त बिलोस्ट्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फोन fm.nl पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, और जहां पर भी हो जी साल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड बडंग बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से राम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें हो, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और मन हो या तो ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफ़ायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल तेडेंस कंटोर यूरो ऑफ 070-213-6598 of op 070-365-2247. जो भी रेडियो का काम हो denk aan फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzar is bent in de binnen kia jara hai kia bhi jel si jel Fahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banaye aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Sabhi jankari uske bare mein aap tar kare op 070-365-2247 ya to op 070-213-6598. तो आप भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। वादा के मुताबिक एक हिदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर, और जिसे मैं आप सभी को कह चुका था अब आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच गए थे फिल्म जहूदी तक बीते हुए दिनों में, जो रिलीज किया गया था 1958 तक में, और इस मूवी में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाय हुस्न, और मलकाय संगीत वंस कौन ओक हेल खुद सिंह एंड शेर शायरी में बहुत ही आगे थी मीना कुमारी जी, उनके ढेर शेर्स के गाने बने और खुद अपने शेर्स वो गाई है, आप ज़रूर कभी सुनिए यूट्यूब पे तो ढेर सारे इनके गाने भी आपको मिलेंगे। संगीतकार शंकर जय किशन के साज पर आप सुनेंगे भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी के मधुर आवाज में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाहुदी, मेरी जा मेरी जान, शैलेंद्र के अल्फाज़े।

तो सजदा कर दीवारों का ये दुनिया।

जी ये डर

0: जिंदगी सस्ती है ये दुनिया।
1: ये दुनिया हमारी है, अति सुंदर बयान। और साथ ही साथ आखिरी बयान फ्रॉम द मूवी जहूदी 1958, शंकर जय किशन के साथ पर शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। और सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह रवि साहब जी कोरस के साथ। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी गाने फिल्म जहूदी का आप सुन चुके। अब लेकर चले हैं आप सभी को हम, चल देखते हैं एक मूवी जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1958 और जो काफ़ी मशहूर हुआ, खूब चला, फिल्म मधुमती। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री विजयंती माला जी के साथ। साथ ही साथ प्राण भी इस फिल्म में अपना अदाकारी को पेश किया है। संगीतकार, महान संगीतकार उस जमाने का, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सहील चौधरी के साथ है। शैलेंद्र के अल्फाज है तो फिल्म मधुमती में से कुछ नगमे आप सुनेंगे। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला, द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर सुपरहिट सॉन्ग सलील चौधरी के साज और संगीत पर शैलेंद्र का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग की सुहाना सफर। और ये मौसम

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM तक। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वपन विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से यह सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान शुभ ग्रह धन लाभ स्थान में स्थित हो या इन स्थानों को देखते हो। बुध निर्बल हो तथा केमद्रुप योग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार हैं। बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों और शुभ ग्रह हो इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लग्नेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो। यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो जाएगा।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लगनेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो, मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, सपन तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ सपन और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता।

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। सुनने वालों,

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्ज़ी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्निकोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वे अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

सुनने वालों बाबा आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। सुनने वालों, भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।